0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रावोचत् यत् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयम् ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया सम्बद्धानां अपूर्वगमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्री एंथनी एल्बनीज अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर्नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमण्डल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिन्द प्रशांत क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान् संबोधयन् प्रधानमन्त्री न्यगादीत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जाग्रतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वाइब्रेंट विलेजेस इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमा प्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः कुशलनेतृत्वे केन्द्रप्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिकरीत्या 400% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्चस्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआरटी केन्द्राणाम् अथ युग्मकोशानां नियन्त्रकतन्त्राणां प्रासंगिकविधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्तराज्यामेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेनाद्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्यचरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर

0: संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहनों के प्रदर्शन पर कुल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को वो खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया have adopted a new joint declaration on defence and security cooperation.

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे राकेश, चिप्स खाएगा?
2: एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं।
1: अच्छा, जरा पैकेट दिखा। ओए, ये तो एक्सपायर्ड है।
2: क्या
3: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? इसलिए ध्यान रखें, खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1800-11-2100 पर।
4: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
7: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
8: हर लेन देन अब है आसान।
9: बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गूंजता बम बम भोले का जयकारा हर भक्त के लिए एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव लेकर आता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन दिल से स्वागत करता है।
10: इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी निर्देशों का पालन अवश्य करें। यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यात्रा रूट में प्रवेश करने के लिए वैलिड RFID कार्ड अनिवार्य है। बिना RFID कार्ड किसी भी यात्री को यात्रा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसीलिए इसे हर समय अपने पास रखें। सफर हमेशा ग्रुप में शुरू करें और पहाड़ी रास्तों को ध्यान में रखते हुए ट्रैकिंग शूज और आरामदायक कपड़ों का इस्तेमाल करें।
9: यात्रा के दौरान स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें। रास्ते में कचरा ना फेंकें और निर्धारित डस्टबिन का उपयोग करें। चढ़ाई करते समय अपनी रफ्तार संतुलित रखें, जल्दबाजी से बचें और बीच बीच में छोटे विश्राम जरूर लें। खाली पेट यात्रा शुरू ना करें। पानी और हल्का भोजन साथ रखें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में तकलीफ या तबीयत खराब महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप में संपर्क करें।
10: सभी निर्देशों का पालन करें और अपनी यात्रा को सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय बनाएं। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

0: हमारी सुबह बन जाए मजीद खुशगवार और यादगार।
1: जी, और कौन रहेंगे हमारे आज के मेहमान? थोड़ा सा तजस्सुस बरकरार रखेंगे और हम आपको जरूर बताएंगे, उसके लिए आपने हमारा साथ निभाना होगा, हमारे साथ जुड़े रहना।
0: नाजमा जी, आज शो जुमतुल मुबारक तो बोझो गुड ये नातिया कलाम।
1: बस कर।

0: पर उसके चेहरे पर ऐसी रौनक छा जाती है जैसे उसका मर्ज ही दूर हो गया हो।
1: बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई आपने। इंसान को सेहतमंद रहने के लिए और अपने अंदर पॉजिटिवनेस पैदा करने के लिए दोस्तों के साथ साथ अपने रवैयों को भी बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर अपने अंदर एक वसत कल्ब पैदा की जाए और उसके साथ साथ वसी नज़र और हमदर्दी से भी इंसान अपने आप को मुतमईन करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो सकता है।
0: और यही इत्मीनान और हौसला खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का वसीला बन जाता है। तो चलिए एक नगमा सुनते हैं।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और आप समाप्त कर रहे हैं मॉर्निंग लाइव शो पयाम सुबह। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर अहमद वानी और मेरे साथ है मेरी साथी नाजमा रशीद।
1: जी शबीर, हमने अपने सुनने वाले दोस्तों के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करने को कहा था।
0: बिल्कुल
1: एक तो तजस्सुस हमने बरकरार रखा
0: जी।
1: हुआ था और तजस्सुस जो है ख़त्म किए देते हैं, उन्हें बताते चलें कि आज का जो हमारा इंटरैक्टिव सेशन रहेगा 10:30 बजे से लेकर ठीक 11:30 बजे तक,
0: जी
1: हमारे आज के मेहमान जो हैं एक सोशल वर्कर हैं, एक एजुकेटर हैं और उनका जो इस्म शरीफ है अकबरुज़्ज़मा है। आज
0: बिल्कुल
1: का जो टॉपिक रहेगा बहुत बेहतरीन और आज के वक्त की ज़रूरत, ये जो शिफ्ट हुआ है लाइब्रेरी से मोबाइल फोन्स की तरफ, तो हम इस हवाले से आज बात करेंगे कि क्या अखलाकी तालीम अपना बेहतरीन उस्ताद यानी किताबें क्या खो रही हैं।
0: बिल्कुल नज़मा, नगमे से पहले आपने पॉजिटिवनेस के बारे में बात की।
1: जी
0: इंसानी फितरत जो है वो मुख्तलिफ किस्म के रवैयों का मजमू है। कुछ लोग मनफी में से मस्बत पहलू निकाल लेते हैं जबकि कुछ का तर्ज अमल जो है मस्बत में भी मनफी पहलू ढूंढ निकालना है।
1: बिल्कुल, और जो मस्बत सोच रखने वाले लोग हैं छोटी छोटी खुशियों को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं और मुआशरे में उन्हें इज्जत की निगाह से भी देखा जाता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश में रहते हैं।
0: नाजमा, अगर देखा जाए तो मनफी सोच रखने वाले लोगों के साथ इसके बरक्स होता है। ये लोग रोशनी में भी अंधेरे के मुतलाशी रहते हैं और माशरे से हटकर तन्हा रह जाते हैं।
1: बिल्कुल, ये बात तो तय है शबीर कि खुशी ऐसा अंसुर है, अंसुर नहीं जिससे आप हम देखें कि अपनी जो ज़िंदगी है उसको सिर्फ बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम खुद भी खुश रहें, और वो अक्सर कहते हैं ना कि एनर्जीज रिफ्लेक्ट होती हैं, तो जब आप एक सर्कल में होते हैं, आप खुश रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी जो एनर्जी है वो दूसरों तक पहुँच जाती है, आपकी जो खुशी, आपकी जो स्माइल है वो कंटेजियस है, आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों की ज़िंदगी में भी बाहर लौट आती है।
0: बिल्कुल, खुशी के हुसूल के खातिर आपको अपने और तर्ज अमल दोनों में तब्दीली करना पड़ेगी।
1: बिल्कुल, इंसान की जिंदगी का हर मंजर उसकी सोच से ही जन्म लेता है शबीर, और इसी सोच और फिक्र से इंसानी जज्बात की पर्दाख्त होती है, और उन्हीं जज्बात की बुनियाद पर इंसान का हर अमल जो है वो सामने आता है।
0: नाजमा, इंसान के जहन में ख्यालात का पैदा होना एक कुदरती अमल है, मगर इन ख्यालात को अमली जामा पहनाना तो इंसान के इख्तियार में है।
1: बिल्कुल, और हकीकत तो ये है कि मुस्बत सोच ही किसी भी फर्द की शख्सियत उभारने और संवारने में अहम किरदार अदा करती है। ये बात भी तय है कि मनफी सोच इंसान की शख्सियत को मस्क करके रख देती है।
0: आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, अगर इंसान अपने सोचने के अंदाज को बदल दे तो उसकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। मुस्बत सोच वो सीढ़ी है जो मंजिल तक रसाई आसान बना देती है।
1: बिल्कुल, इसके बरक्स मनफी सोच इंसान को ज़हनी मरीज बनाती है और उसमें कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ती, और उसके साथ साथ जो ऐसे लोग दूसरों के लिए भी मुश्किल पैदा करते हैं या फिर हसद में बैठे रहते हैं।
0: इसके लिए हमें अपनी सोच पर काबू पाना होगा ताकि हमारी शख्सियत जो है वो निखर जाए। तो क्या ख्याल है आपका?
1: बिल्कुल, एक बेहतरीन सा नगमा हो जाए।
0: बिल्कुल।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग दे जिमा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रूशित सुलुम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: आपने ट्यून किया आकाशवाणी श्रीनगर और आप समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह। नाजमा, सुबह के 7:45 हो रहे हैं, अब हमारे यहां से खबरें नश्र होंगी।
5: आदाब, ये छे आकाशवाणी। सुबह दून 8 मीर तारिक बोजनावे खबर गोड़ हेडलाइनन पेट अख नजर। भारत तो ऑस्ट्रेलियान कर भारत बहरुल कायलस मज अमन तो इस्तेकाम कायम करने के गर्ज बचाव तो सिक्योरिटी अथवास के सिलसिलस मज एकिस मुश्तरक एलानियास पेट दस्खत। सरकारन छे इलेक्ट्रॉनिक आलन मज इस्तेमाल सपदन वालन अहम चीजन पेट बुनियादी कस्टम ड्यूटी खत्म करमच। ईरान चु अमरीकास राह खोलमुत जे एम कोर बुशैर न्यूक्लियाई बिजली प्लांटस नख हवाई हमल। ता IMDN चु आज उत्तराखंड किन केचन हिस्सन मज गंड रूद पेन बाबत रेड अलर्ट जारी कोरमुत। वंच पेश खबरन हुन तफसील। वजीर अजम नरेंद्र मोदी तो आस्ट्रेलिक तिहद हम मनसबन कर मेलबोर्नस मज रात त्रेमिस आस्ट्रेलिया भारत सालाना लीडर्स समिटस मज शिरकत।

का हम सफर आज के प्रोग्राम का मौजू है आलम मलाइका अलैहिमुस्सलाम। मुकर्रर हैं मौलाना फैयाज अहमद जरू साहब। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपड़ा।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम

0: की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने 4थे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल, बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा

0: व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया।

0: है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: फिर एक मरतबा आपका दिल से इस्तकबाल। आप समाप्त कर रहे हैं पयाम सुबह की नशरियात। मैं हूँ नाजमा, मेरे साथ है शब्बीर अहमद।
4: नाजमा, आज 10 जुलाई है। आइए तारीख के अवराक पलटते हैं और देखते हैं आज के दिन दुनिया में कौन से अहम वाकयात रोनुमा हुए हैं, किन नामवर शख्सियात ने जन्म लिया है और कौन सी मारूफ शख्सियात आज के दिन फोत हुए हैं।
3: जी, आज 10 जुलाई और 10 जुलाई 1962 को दुनिया ने साइंस की एक ऐसी कामयाबी देखी जिसने मुआसलात का नक्शा ही बदल दिया। इसी रोज नासा की तरफ से टेलस्टार नामी दुनिया का पहला फाल मुआसलाती सैटेलाइट खला में रवाना किया गया। इस कामयाबी के जरिए पहली बार बहरे अवकियानूस के दोनों किनारों के दरमियान बराह रास्त टेलीविजन नशरियात, टेलीफोन राबते और मालूम की तरसील मुमकिन हुई।
4: आज जब हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपने अजीजों से वीडियो कॉल करते हैं, बराह रास्त खेलों के मुकाबले देखते हैं या आलमी खबरों से लम्हा लम्हा बाखबर रहते हैं, तो इस इनकलाब की बुनियादी टेलीस्टार जैसे मनसूबों में ही मिलती है। ये कामयाबी जदीद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की समत पहला बड़ा कदम साबित हुई। 10 जुलाई 1967 को न्यूजीलैंड ने اپنی مالیاتی نظام ایک

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और आप समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह। नाजमा, अभी हम नगमे से पहले तारीख में आज के दिन के हवाले से बात कर रहे थे और आज भारतीय क्रिकेट की एक ऐसी अजीम शख्सियत का जन्मदिन है जिन्होंने न सिर्फ अपनी शानदार बैटिंग से दुनिया को मुतासिर किया बल्कि आने वाली नस्लों के लिए कामयाबी, नज्म ज़ब्त और साबित कदमी की एक रोशन मिसाल भी कायम की। जी हाँ नाजमा, हमारे सामीन समझ गए होंगे आज भारतीय क्रिकेट का रोशन सितारा सुनील मनोहर गावस्कर अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं।
1: जी, 10 जुलाई 1949 को मुंबई में पैदा होने वाले सुनील गावस्कर बचपन ही से क्रिकेट के शौकीन थे। उनके वालिद मनोहर गावस्कर खुद भी क्रिकेट से वाबस्ता थे जिसकी वजह से उन्हें खेल का माहौल घर से ही मिला। छोटी उम्र से ही उनकी तकनीक, तहमुल और खेल से लगन नुमाया थी।
0: 1971 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया। ये वो वक्त था जब वेस्टइंडीज की टीम दुनिया की मजबूत तरीन टीमों में शुमार होती थी, लेकिन नौजवान गावस्कर ने अपने पहले ही दौरे वेस्टइंडीज में 774 रन बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कारनामा आज भी टेस्ट क्रिकेट की तारीख में शुमार किया जाता है।
1: जी, सुनील गावस्कर को दुनिया के बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। उस दौर में न ही जदीद हफाजती सामान मौजूद था और न ही हेलमेट का आम इस्तेमाल था, मगर उसके बावजूद उन्होंने दुनिया के खतरनाक तरीन तेज गेंदबाजों का इंतहाई एतमाद और महारत से सामना किया। उनकी बैटिंग की सबसे बड़ी खसूसियात मजबूत दफा, गैर मामूली तवज्जा, शानदार तकनीक और तवील इनिंग्स खेलने की सलाहियत थी। वो क्रीज पर जो है घंटों खड़े रहकर मुखालिफ टीम के हौसले पस्त कर देते थे।
0: 1983 में जब भारत ने कपिल देव की कयादत में पहली मर्तबा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता तो सुनील गावस्कर भी इस तारीखी टीम का अहम हिस्सा थे। अगर फाइनल में उनकी बड़ी इनिंग्स न थी, लेकिन उनकी मौजूदगी, तजुर्बा और कयादत ने पूरी टीम को एतमाद बख्शा।
1: जी, सुनील गावस्कर ने अपने टेस्ट करियर में अपने जो है 125 मैच खेले हैं जिनमें 10,122 रन्स बनाई। वो टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन्स मुकम्मल करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। उन्होंने 34 टेस्ट सेंचुरियां भी स्कोर की हैं जो अपने वक्त में आलमी रिकॉर्ड थी।
0: नाजमा, सुनील गावस्कर का एक और मुनफरद एजाज ये भी है कि उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 13 टेस्ट सेंचुरियां बनाई जो उस दौर की मजबूत तरीन बॉलिंग के खिलाफ उनकी गैर मामूली सलाहियत का सबूत है। एक रोजा क्रिकेट में भी सुनील गावस्कर ने भारत की नुमाइंदगी की और 108 मैचों में हिस्सा लिया। अगरचे उनकी पहचान बुनियादी तौर पर टेस्ट क्रिकेट रही, लेकिन उनकी तकनीकी महारत हर फॉर्मेट में काबिल एहतराम थी।
1: क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सुनील गावस्कर ने

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और आप सुन रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह। सुबह के 8:30 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खित्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड तैयार करने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है और मर्दों के क्रिकेट

चौथे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। दोनों मुल्कों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी एल्बिनीस के दरमियान बातचीत के दौरान दिफाई और बहरी सिक्योरिटी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अहम इकदाम का भी ऐलान किया है। कल मेलबर्न में तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबराह मीटिंग के अहम नतीजों में दिफाई

0: हो गई है। दोनों मुल्कों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हमनसब एंथनी एल्बनीज के दरमियान बातचीत के दौरान दिफाई और बहरी सिक्योरिटी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अहम इकदामात का भी ऐलान किया है। कल मेलबर्न में तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबराह मीटिंग के अहम नतीजों में दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक के बारे में मुश्तरका ऐलानिया और बहरी सिक्योरिटी तावुन से मुतालिक खाका शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरका अखबारी बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बहरुल काहिल महज दो समंदरों के संगम का मकाम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी हम ख्याल जमहूरी मुल्कों की मुश्तरका उमंगों की अक्कासी होती है।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि तरफेन ने भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूरेनियम की तवील मुद्दती सप्लाई के लिए इंतजामी समझौते को हतमी शक्ल दी है। उम्मीद है कि इस मुआहदे से माहौलियात के लिए साजगार भारत का तवानाई प्रोग्राम मुस्तहकम हो सकेगा और नेट जीरो के उसके मकासद को तकवियत मिलेगी।
2: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcome today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
0: बाद में मेलबर्न में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द से जल्द दुनिया की चोटी की तीन मईशतों में से एक बनने की भारत की ख्वाहिश ज्यादा तरक्की ज्यादा कामयाबी के मंत्र पर मबनी है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर एचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप थ्री इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस कार्रवाई से दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई अंजाम देने के लिए भारत के अंदरून मुल्क तैयार करदा दिफाई निजाम की सलाहियत और उसके मौसर होने का मुजाहिरा हुआ।
1: भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी नई बुलंदी पर पहुंच गई है और इसमें मुश्तरका अकदार अवाम से अवाम के मजबूत राबतों और मुख्तलिफ अहम शोबों में इश्तराक में वसत का अहम रोल है। वजीर आजम ने भारतीय बिरादरी के 10 लाख अफराद को बाहमी ताल्लुकात का एक अहम सुतून करार दिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज ने भारतीय बिरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक जीते जागते पुल से ताबीर किया।
3: The energy that we feel in here tonight defines the Australia-India partnership. It is an enthusiasm and a dynamism that drives the positivity and promise of our two nations and peoples.
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑपोजिशन के लीडर एंगस टेलर से मुलाकात की। नामनिगार ने बताया है कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और सियासी इश्तराक पर तबादले ख्याल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
4: ये मीटिंग वाज़ेह इशारा करती है कि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात को दोनों अहम पार्टियों की किस कदर तायीद हासिल है। स्ट्रेटजिक शराकत दारी में तआवुन पर इत्तेफाक करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क का सच्चा दोस्त करार दिया और मुल्क की सालमियत के तहफ्फुज़ और भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ताल्लुकात को फ़रोग देने की तायीद की। आला सतही मुलाकात के नतायज की हिमायत करते हुए अपोजिशन लीडर टेलर ने पुरअमन मकासद के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम फराहम करने और बैनुल अक्वामी शमसी इत्तेहाद जैसे तकनीकी तआवुन के इकदाम की भी तायीद की। یہ بات چیت سیاسی تبدیلیوں کے باوجود

0: राहत के लिए मुस्बत अलामत मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अहदेदारों को भगवान शिव के हर अकीदतमंद की 24 घंटे देखभाल को यकीनी बनाने की दी हिदायत।
1: वजीर आला उमर अब्दुल्ला का देर पा सियाहती मनसूबा बंदी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। जम्मू कश्मीर को देर पा सियाहती मंजिल के तौर पर तरक्की देना जरूरी। सयाहों की तादाद के बजाय अकदार पर मबनी सियाहत को फरोग देने की जरूरत पर जोर।
0: जी लिखते हैं, मरकजी वजारत दाखिला ने किया अगमुत, कैडर में बड़ा रद्दोबदल, 40 अफसरान के तबादली जगहों पर तैनाती का हुक्म। आईएएस अफसर शाहिद इकबाल चौधरी और अरुणाचल प्रदेश और स्वाति जो है शिमार तनुश्री दिल्ली मुंतकिल।
1: एक अंग्रेजी अखबार की सुर्खी है, एलजी रिव्यूज अरेंजमेंट्स फॉर अमरनाथ पिलग्रिम्स विजिटर्स पाथ चौक यात्रा ट्रांजिट कैंप।
0: जी लिखते हैं, डॉक्टर अलीजान रोड ईदगाह श्रीनगर की हालत खस्ता, गुलाम नबी मसूदी सदर समाज सुधार कमेटी जोन ईदगाह की डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से मुदाखलत की अपील।
1: 8150 यात्रियों का जत्था गुफा की तरफ रवाना, 3445 की मंजिल बालतल और 4705 की ननवन बेस से भी रवाना हुए।
0: कश्मीर में बारिश का 21.63% खसारा, जम्मू में 8% ज्यादा, शोपियां में सबसे ज्यादा 77% बारिश की कमी, उधमपुर और सांबा में नुमाया इजाफा, वादी में बारिश की कमी बरकरार, जम्मू डिवीजन में मामूल से जायद बारिश रिकॉर्ड, महकमे मौसमियात।
1: एक अंग्रेजी अखबार की सुर्खी है, इंडिया फ्रीड फ्रॉम नक्सलिज्म टेररिज्म नेक्स्ट टारगेट नारकोटिक्स, एचएम शाह।
0: जी लिखते हैं, डीसी बड़गाम ने होकर सर वेटलैंड की हदबंदी पर पेशरफ्त का लिया जायजा।
1: सेंट्रल सिलिक बोर्ड ने बड़गाम में शुमाली खत्ते के लिए MRMA 2.0 और ओरिएंटेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप में रियासती महकमे रेशम परवरी के 60 से जायद अफसरान ने शिरकत की, जिनका ताल्लुक उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से था।
0: गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कोर पैनल फॉर हेल्थ रिफॉर्म्स कमेटी टू एड्रेस की हेल्थ केयर चैलेंज।
1: सीनियरिटी और तरक्की के लिए सिर्फ एक पीजी डिग्री काबिल कबूल, असातिज़ा को 30 दिन में एक मरतबा इंतखाब करना होगा, बाद में तब्दीली की इजाजत नहीं होगी, महकमे तालीम।
0: ओवर 6,600 स्टूडेंट्स टू टेक NMMSS स्कॉलरशिप टेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर।
1: मोबाइल पासपोर्ट वैन 13 से 15 जुलाई को करगिल में पासपोर्ट खदमात फराहम करेगी।
0: कश्मीर बेट्स ऑन होम स्टेज फॉर टूरिज्म ग्रोथ, ओवर 2,000 रजिस्टर्ड एज बॉर्डर टूरिज्म गेन्स मोमेंटम।
1: एक अखबार की सुर्खी है, कश्मीर में मौसमी बारिशों में 21.63% कमी, जम्मू डिवीजन में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड।
0: कश्मीरी ब्रदर्स इंस्पायर होप थ्रू लिविंग लिवर डोनेशन, व्हेन आवर मदर हैज टू सन्स हु कैन डोनेट, व्हाई टेक अवे समवन एल्सस चांस बाय ऑप्टिंग फॉर कैडावर ट्रांसप्लांट।
1: हंदवाड़ा में सड़क हादसा, हेडमास्टर जाम बहक।
0: जी मेरे पास कुछ और अखबारात बचे हुए हैं, लिखते हैं, लो यील्ड हाई रिटर्न्स, कश्मीर चेरी ग्रोवर्स एंड सीजन ऑन अ पॉजिटिव नोट।
1: एक अंग्रेजी अखबार की सुर्खी है, स्टेटहुड पुश एनसी इनवाइट्स इंडिया ब्लॉक, जेएनके लीडर्स फॉर दिल्ली प्रोटेस्ट, सोनिया गांधी, बीजेपी जेएनके प्रेसिडेंट मीरवाइज उमर फारूक अमंग इनवाइटीज।
0: स्ट्रीमलाइन ट्रैफिक इन श्रीनगर कंजेस्टेड एरियाज, IGP ट्रैफिक रिव्यूज ट्रैफिक मैनेजमेंट इन डाउनटाउन।
1: समीन सुर्खियां जारी हैं, हमारे साथ बने रहिए।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
4: यह सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
3: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें।

0: क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहने। पर्यावरण की पवित्रता बनाए रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर न फेंकें। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
1: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: जी सामीन, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखबारात की सुर्खियां आप समाप्त कर रहे हैं। मेरे पास उर्दू रोजनामा सफ़े अव्वल पे ये सुर्खी लिखते हैं, जम्मू कश्मीर और शुमाल मशरक़ को नक्सल आज़म और दहशत गर्दी से आज़ाद कराया गया, अमित शाह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हमारी इज्तमाही कामयाबियां। नई दिल्ली में लैंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस 2026 से खिताब।
3: यात्रा ड्यूटी से बिला जवाज गैर हाजिरी, SPO मुलाजमत से बर्खास्त।
2: हर रोज 26,000 से ज्यादा लोग कैंसर से दम तोड़ रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
3: एक अंग्रेजी अखबार की सुर्खी है, सवेज पोल्यूशन डिजीज कॉज्ड 65 स्प्रिंग फिश डेथ्स।
2: चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू की सदारत में जामिया जायजा मीटिंग मुनक़िद। जम्मू कश्मीर में PM सूर्य गृह योजना और सोलर एजिशन मशीन के लिए माहाना अहदाफ तय किए गए।
3: श्रीनगर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, जायद आज 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें जब्त।
2: जी मेरे पास और एक उर्दू रोजनामा लिखते हैं, चीन के लिए मवाके के सारे दरवाजे खोलकर कौमी मफादात से समझौता कर रही है हुकूमत, खरगे।
3: जम्मू कश्मीर में पायदार सियाहत की तरक्की के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली ज़ेर गौर, तमाम मुतल्लिकीन के साथ मशावरा शुरू, डायरेक्टर टूरिज्म।
2: मालदीप और भारत के दरमियान आजाद तजारती माहिदे पर पेशरफ्त, इक्तसादी तआवुन मजीद गहरा करने पर इत्तेफाक।
3: एक उर्दू अखबार की सुर्खी है, सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ मवाद पर मुश्तमल किताबों की मौजूदगी, सरकारी निजी स्कूलों और कोचिंग सेंटरों में किताबों के जामा ऑडिट का हुकुम।
2: पुलवामा में जब्त शुदा चर्स, गांजा और नफसियाती अदवियात तल्फ, अदालती अहकामात पर IGC लसीपोरा में भारी मकदार में मनशियात नजर आतिश, क्राइम ब्रांच और ANTF के मुश्तरका कार्रवाई, मनशियात मुखालिफ क्रैकडाउन जारी।
3: डलझील के तहफ्फुज से मुतलिक 24 बरस पुराना मुकदमा, अदालत ने जामा पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली।
2: जी लिखते हैं, दही सरकारी स्कूलों में कमरों की शदीद किल्लत, नामुकम्मल तामीराती मंसूबे और बुनियादी ढांचे की कमी से मायारी तालीम में रुकावट, असातिजा की दस्तियाबी के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का बहरान बरकरार, तालीमी सरगर्मियां मुतासर।
3: लद्दाख में सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा, गैर मुल्की सयाहों की तादाद तकरीबन दुगनी, जम्मू कश्मीर में पायदार सयाहत पर जोर, चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में PM सूर्य घर योजना और सोलराइजेशन मिशन के लिए माहाना अहदाफ तय।
2: वादी के तमाम स्कूलों में किताबों की जांच का हुक्म, काबिले एतराज मवाद की निशानदही की जाएगी, 19 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। सरकारी व निजी तालीमी इदारों को और कोचिंग मराकज को तमाम मुताला जो है वो किया जाएगा, और ये हुक्म जो है आज के अखबार पे सादर हुआ है।
3: एक अंग्रेजी अखबार की सुर्खी है, सिख डेलीगेशन मीट्स NC चीफ, सिक्स माइनॉरिटी स्टेट्स डॉक्टर फारूक एश्योर्स टू रेज कम्युनिटीज डिमांड्स विद सेंट्रल लोकल अथॉरिटीज।
2: जी कुछ और अखबारात अभी मौजूद हैं और बैनुल अक्वामी सतह पे कुछ सुर्खियां सामने आई हैं। लिखते हैं, ईरानी साहिल गैर मुल्की अफवाज के लिए जहन्नुम है, जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी, एडमिरल सयारी। और इसी अखबार से और एक सुर्खी लिखते हैं कि नजफ और करबला, रहबरी शहीद उम्मत की तारीखी तशी में इराकी अवाम की भरपूर शिरकत। इसी अखबार से चंद और सुर्खियां आप तक पहुंचाते हैं। लिखते हैं, अमरीकी हमले जंग बंदी की मफाहमती याददाश्त की पहली शक की खुली खिलाफ वर्जी है, ईरानी वजीरत खारजा। अमरीकी जारियत पर सियाह پاسداران کا پہلا بھرپور جواب لکھتے ہیں کہ جواب دیا جائے گا۔ میرے پاس اور ایک اردو روزنامہ ہے، اس سے

आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुशाहिद हुसैन। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहदें, खुशहाली सरहदी खत्ते और एक खुशहाल मुआशरा एक साथ मिलकर ही मुल्क को महफूज बना सकते हैं। कौमी राजधानी नई दिल्ली में सरहदी रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के सभी एसपीज़ के साथ मुनक़द एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि मुल्क के नक्सलवाद से मुतासर इलाकों को नक्सलवाद और जम्मू कश्मीर नीज शुमाल मशरक खत्े को दहशतगर्दी से पाक किया गया है, जो कि एक इज्तिमाई कामयाबी की अलामत है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार ने सरहदी बुनियादी ढांचे में 400% का इजाफा किया है। कॉन्फ्रेंस में मुतल्लिका रियासतों और यूटीज के साथ साथ जम्मू कश्मीर के एसपीज ने भी शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पांच चौक यात्री निवास में इंतजाम का जायजा लेते हुए कहा कि यात्रियों की आसानी के लिए तमाम तर सहूलियात मयसर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मेहमान यात्रियों की बदौलत हमारे हैंडलूम और दस्तकारी मसनूआत को मुल्क के कोने कोने में पहुंचाया जाना चाहिए और इस तरह से हमारी मुनफरद सकाफत हर श्रद्धालु के घर तक पहुँच जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमारे दस्तकार अकीदे, तहजीब और खुशहाली को एक साथ बुन रहे हैं। मनोज सिन्हा ने

0: कहा कि यात्रियों की बढ़ती हुई तादाद सियाहती शोबे के साथ साथ हमारी दस्तकारों के लिए भी एक नेक शगुन है और इसकी बदौलत हमारे यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की मुहिम मजीद मजबूत होगी। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा अहसन तरीके से जारी है और आज भी बालतरो चंदनवाड़ी के बुनियादी कैंपों से कई हज़ार यात्री पवित्र गुफा की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। कल दिन भर भी 27,000 से ज़्यादा यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए और इस तरह से कल शाम तक दर्शन करने वाली यात्रियों की मजमुई तादाद 1,60,000 से ज़्यादा हो गई है। दरअसल जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज सुबह 8,800 श्रद्धालुओं पर मुश्तमिल नौवां काफिला भी वादी की तरफ रवाना किया गया है। आज सुबह 8 बजे तक मजीद 3,017 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पायदार सियाहत और माशी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में मिकदार की बजाय मैयार पर मबनी सियाहत को फ़रोग देने पर जोर दिया है। SKICC श्रीनगर में पायदार सियाहत से मुतल्लिक एक कन्क्लेव से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने सियाहती मकामात के मास्टर प्लानों और वहाँ इमारतें तामीर करने के लिए वज़ह करदा सवाबित पर सख्ती से अमल पैरा रहने की अहमियत उजागर की है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान और इसकी अमल आवरी बेहतर अंदाज की होनी चाहिए क्योंकि चुनिंद मकामात पर इसकी अमल दरामद से अवामी एतमाद कमज़ोर पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि सियासी मनसूबाबंदी दफातर की चार दीवारी में नहीं बल्कि उन लोगों से मशावरत के साथ तरतीब दी जानी चाहिए जो वहाँ नस्ल दर नस्ल रहते आए हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने सेंसस 2027 के सिलसिले में पहले मरहले के तहत मकानों को शुमार करने का मरहला अहसन तरीके पर और बरवक्त मुकम्मल करने के लिए इस अमल से जुड़े सभी जिला सेंसस अफसरों, शुमार कुनंदगान, सुपरवाइजरों और चार्ज अफसरों की सराहना की। इस सिलसिले में श्रीनगर में यूटी सतह की सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग की सदारत करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने मरदमशुमारी के अगले मरहल की सरगर्मियां भी इसी रफ्तार के साथ बरकरार रखने पर जोर दिया। उन्होंने सभी मुतल्लिका हुकाम और आवाम को यह अमल अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए अपना भरपूर ताउन देने की अपील की। आज जम्मू कश्मीर में मुनक्कद होने वाले नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम का इम्तिहान मुनक्कद किया जा रहा है जिसमें करीब 6,600 तालिबे इल्म शिरकत करने वाले हैं। इस इम्तिहान के लिए यूटी भर में 97 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जेरी निगरानी मुनक्कद होने वाले इस इम्तिहान का मैयार बरकरार रखने के लिए रहनुमा जवाबित वजह किए गए हैं। इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत इम्तिहान देने वाले तालिबे इल्म 1,068 नशस्तों के लिए मुकाबला करेंगे। इम्तिहान पास करने वाले तालिब इल्मों को 9वीं जमात से आगे अगले 4 बरस तक सालाना 12,000 रुपये का मुशायरा दिया जाएगा। इखलाकियात से मुतल जम्मू कश्मीर असम्बली की कमेटी की एक मीटिंग चेयरमैन निज़ामुद्दीन भट्ट की सदारत में मुनक्कद हुई जिसमें कमेटी के सभी अरकान भी मौजूद थे। कमेटी ने कानून साज इदारों में अरकान की इदारा जाती रहनुमाई के लिए एक जामे मैयार जवाबित अमल तरतीब देने पर भी तबादले ख्याल किया। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.4 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं और आप सुन रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह। मैं हूं आपका मेजबान शबीर अहमद वानी और मेरे साथ है मेरी साथी नाजमा रशीद।
2: जी, और वक्त हुआ चाहता है आप तक हम कुछ अपडेट्स पहुँचाएँ। हम शुरू करते हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से। बताया जा रहा है कि आज छोटी गाड़ियों को श्री अमरनाथ जी यात्रा की जो कॉन्वॉय है उन्हें दोनों अतराफ चलने की इजाज़त होगी जबकि बड़ी गाड़ियों को अल्टरनेट डेज पर छोड़ा जा रहा है। फिलहाल आज है उधमपुर से श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त होगी। किश्तवाड़ सिंथन अनंतनाग रोड आज गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद ही है। SSG रोड पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ चलने की इजाज़त होगी। मुगल रोड पर भी आज छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ चलने की इजाज़त होगी बशर्ते मौसम साजगार और सड़क की हालत बेहतर रहेगी। आपसे दरख्वास्त के रखते सफर बांधने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात पर रबता जरूर कायम कीजिएगा।
1: नाजमा, समीन को मौसम के हवाले से भी हम अपडेट करते हैं। वादी कश्मीर में मौसम अमूमन आज गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम महकमा मौसमियात ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिशों और गरज चमक का अलर्ट भी जारी किया है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है और फिलहाल धूप छाई हुई है। सियाहती मकामात पर मौसम निस्बत खुशगवार है। गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत 10.5 डिग्री

0: सेल्सियस और पहलगाम में 20 डिग्री के आसपास रहने का इम्कान है।
1: जी, और 27 डिग्री सेल्सियस लाइव टेम्परेचर इस वक्त शहर श्रीनगर का बना हुआ है। मौसम बहुत सुहाना है और बहुत अच्छा रहता है शबीर इस वक्त पे कि हम सुबह के वक्त पे कहीं जाएं या फिर अवॉइड हम करते हैं दोपहर का जो वक्त रहता है, फिर सपहर में हम वॉक वगैरह पे जा सकते हैं। और अभी चूंकि बच्चों के की समर ब्रेक्स भी चल रही हैं तो बहुत बेहतर रहेगा अगर आप बच्चों के साथ कुछ वक्त सर्व करें। कोशिश करें कि आज आप उन्हें किसी अच्छी जगह पे लेके जाएं ताकि उनकी यादों का जो खजाना है वो भर जाए।
0: ناظم جی آج جمعت المبارک تو آج کی نعتیہ کلام پیش کران بزرگ گڑ یہ نعتیہ کلام

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुँचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेट सुबह 10 बजे पेट साढ़े 10 बजे तक नश सदान वाली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सबिन तुएसु प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम छु प्रेत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजन ताम नश्र सब्दान।

0: बात का दोनों लिहाज से हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये गुलू की हद तक नहीं जाना चाहिए। चाहे तवज्जो का मामला हो, उसमें भी एतदाल की जगह पे हमें रहना है। हाँ, तवज्जो रखनी है, उन पर नजर गुजर रखनी है, लेकिन गुलू की हद तक नहीं, लेकिन उनको आज़ाद भी छोड़ना है। वो मौके भी हैं, बच्चों को आज़ाद भी छोड़ना है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे ऑर्फनेज सेंटर का ये है कि वहाँ डे नाइट केयरिंग होती है। अब बच्चे का क्या है कि बच्चा सात, जो आम बच्चा होता है वो 6-7 घंटे स्कूल में होता है, स्कूल से ही जब वो घर वापस जाता है वो अपना थोड़ा आज़ादाना माहौल, उस लिहाज से उसमें नशोनुमा में काफी फर्क आ जाती है। ये है, ये एक बुनियादी फर्क है इसमें।
1: बिल्कुल फर्क है। और एक ये चीज भी हमने देखी है कि आपने बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही और आपने कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया, जैसे कफालत का आपने जिक्र किया, कंपैरिजन जो बच्चों में हो रहे हैं, या फिर मोहब्बत एक बहुत बड़ी बात है। हम अक्सर जब भी बात करते हैं ओल्ड एज होम्स की, हालांकि हम अगर वक्त मिला तो वहां की तरफ भी जरूर जाएंगे, ओल्ड एज होम्स की जब बात करते हैं हम अक्सर देखते हैं इस वक्त पे जो रुझान बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ के एक बहुत बेहतरीन एक बुजुर्ग हैं, हिस्टोरियन हैं, उनसे मैंने एक सवाल पूछा था बहुत साल पहले कि आज क्या इस ओल्ड एज होम क्या इस पे जरूरत है, तो क्या इस बासा, और उन्होंने कहा कि ये चुन अजुक क्या वरी ब्रोह ऐसे वो मुत ऐसे ये बच कर पानस नश दूर स्कूल पे शुर तेस माज हज कच मज थवान कल पत् सारी स्टोरी वनान हम बच्चन क्या कोर ये बच्चन क्या कोर अटैचमेंट गल सो अटैचमेंट कम गई नतीज द्रा पगह सो रेसिप्रोकेट हेकान कर वालदेन गई ओल्ड एज होम।
0: ये जो आप ओल्ड एज की जो बात आपने की, ये भी एक हमारे माशरे का बहुत ही अहम मामला बनता जा रहा है। अब क्योंकि सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का तो था ही नहीं ओल्ड एज का मामला। इसमें मैं एक बुनियादी बात आपसे जो शेयर करना चाहूँगा, खासकर क्योंकि बच्चों से उस तरह का तकाजा नहीं किया जा सकता है जितना कम से कम जो बालिग हैं, जो मैच्योर हैं शऊरी तौर पर, उसमें बुजुर्ग भी आ जाते हैं, उसमें उनके औलाद भी आ जाते हैं जो शादीशुदा होते हैं। मैं शुभासान अच्छे बुनियादी वजह या पेशेंस ना ऐसा सब्र,
1: हाँ जी
0: सब्र सख कलीद बेमार रेमेडी बह दूम मिसाल कह बुजुर्ग आसान क्या के अल्लाह ताला सुन मामल कि आके एज पे कह बेमार बुजुर्ग लेडी लाख ग अगर अक बेमार तल्लु बह दिसाल मे तजुर्बन गुमत कि बुजुर्ग अकीकत दोहरान मामल अकीकत दोहरान मिसाल के अगर ये पे बचस वन मे अन जो मार्केट ये चीज सनान कह नर्वा बंद अम पे अगर ये दोस पे काम या पे दुकान या ऑफिस पे चोर लट फोन कर या अन जो दोहरान मगर हूँ ब्या इरीटेट ग यह सब्र मुजाहर कर नतीज क्या ना कि यह समझान कहें कि दरअसल तमि जहनी कैफियत मज व बुजुर्ग गुजरान ये मामल लाग कि यह तजुर्बस मज यह अन ना अन यह पे दोहरान नतीज नमिश तुम अमिस बुजुर्ग सन कत करो कि यह अम ब्रोह वो तथा मज बुनियादी वजह यह यह दोनवी साइड मेकिस गरच वनो नोशा या औलाद या हशमोज या मोल यह कोरिलेट कर सो मामल अत म सब्र मुजाहर कर लाजमन वो गो तमिस मुतल हेको जरूरी रियायत दिख नए बसान सही रवायत कह ओल्ड एज इत पे कफालत उत तम कुर तजकर कि कफालत गो वे शिफ्ट ऑर्फनेज सेंटरस मन इत पे हुकुम कि पन्न वालदेन हूँ ख्याल थवन मगर ये ख्याल थवन अत सत कि मुमकिन अस म पे यु मामल सामू पहन
1: सही और यम चीज शायद तम मूजूब वन मत क्या कि नजर ऐस कि बुथ ग मामल ये कन तो ये वजह फरमो कि इस बुजुर्ग कत कर चोर लट रिपीट पांच लट रिपीट यह वन गायद ये गलत कि यह साइकिल चलान क्या कि अम बचन तेस लकचार पंच सास लट पुछमुत अक चीज मुतल पुछमुत ये वन
0: और
1: ये मोल तेस ये मोज तेस बचस त्रि फिर चोर फिर वन यह गो कव यह गो कव अमिस बचस क्या गोब पगह अमिस मल सोर लटि अत पृ यह साइकिल रिपीट गमेशा शायद वन कि बच तो बुजुर्ग हे

0: जहाँ तक समझा है इसमें ये बात सामने आ रही है जो एक बहुत बुनियादी बात है वो ये है कि इंसान में इस तरह की सलाहियत पैदा होनी चाहिए नामुवाफिक हालात को वो मुवाफिक हालात में पैदा कर सके।
1: ऑप्टिमिज्म।
0: अब देखो ना अभी जो अभी हमने अभी तक जो गुफ्तगू की उसमें अगर आप एक्सक्यूज को देखोगे ना बहानाबाजी वो हमारे माशरे का एक हिस्सा बन चुका है खासकर बच्चों का भी। जबकि इसी उस्ताद ने मुझे सिखाया था कि इफ यू हैव अ गुड एक्सक्यूज डोंट यूज इट
1: ओके
0: ये फॉर्मूला है।
1: ठीक बहुत गहरी बात है।
0: तो ये जो किताब बीने की बात और ये मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से हासिल नहीं हो सकती वहाँ उसके भी अपने कुछ फायदे उसे इनकार मैं नहीं कर सकता हूँ लेकिन ये जो बात मैंने आपके सामने शेयर की कि ये बात मुझे अभी याद आई उन्होंने इसको आप अपनी जिंदगी का एक ऐसा ये शार बनाओ कि इफ़ यू हैव अ गुड एक्सक्यूज डोंट यूज इट। अब देखो इस बहाने से कितने मसाइल हमारे माशरे में है बस आप क्यों देर से आए बहाना आप ये काम क्यों नहीं मुकम्मल कर पाए बहाना। अब इसमें तरबियत और ऐसी नशोनुमा इसको ऐसी होनी चाहिए कि जब वो अपने आप को इस चीज इसके लिए तैयार करे कि मुझे कभी एक्सक्यूज रखना ही नहीं है। और वो जो बात मैंने इससे पहले की कही कि ना मुवाफिक हालात को
1: जी।
0: मतलब जैसे ऑर्फन को ही ले जिस तरह जो हमारी पहली गुफ्तगू अगर वो इस बात को बिठाए कि मैं यतीम हूँ मेरा बाप नहीं है मैं समझता हूँ ये भी एक गलत बात है इस बात को कभी उसकी कमजोरी नहीं बनाना है।
1: सही
0: जो तरबियत करने वाले होंगे वो उसकी नशोनुमा ऐसे करें कि उसको कभी इसका एहसास नहीं दिलाना है कि भाई आप ऑर्फन हो वो उसकी कमजोरी के पस मंजर के लिहाज से मैं ये बात करूँ कि ये कमजोरी बनेंगे ये कह बरक्स पावर बनो कि मैं पेश मजीद जिम्मेदारी। तो यही हमारे असलाफ रहे हैं
1: इफेक्ट किताबों से हमें फिर मिलता है आफ्टर इफेक्ट का क्वेश्चन है जब हम किताब कोई मुकम्मल करते हैं ये पत्सो बांध कर आंच इंसान चु कुछ टाइम के लिए खामोशी में सोच में पड़ जाता है
0: टेक अवे जो उससे मिलता है ना आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है मतलब वो टेक अवे जो जो वो पड़ेगा ना मतलब वो उसी को जो महसूस उन कीफियात से वही
1: मुतबादिल नहीं
0: कोई नहीं हो सकता
1: सवाल ही नहीं। हमने कुछ ऐसा भी देखा कि इंसानों से उस बात क्यों गसा मस्जिद के ताब पर ऐसे भी मामला रहे हैं वहीं कहने से क्या तो बिछा
0: मैं अपने सामीन आपकी बात यहाँ काट रहा हूँ माजरत चाहता हूँ मैं अपने सामीन के लिए अपने बच्चों के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि वो अपने घर में उनको इस तरह का एक माहौल सबसे पहले पैदा करें। मैं ज़ाती तौर पर मेरी शुरुआत इससे कैसे हुई मेरी शुरुआत इससे ऐसे हुई कि तब तो मोबाइल तो ज़्यादा अभी नहीं आया था माशरे में शुरुआत हुई कि एक शौक उभरा कि मेरे कमरे में एक अलमारी ऐसी होनी चाहिए और उसमें किताबें दिखें समझ लीजिए मैं तो आय के लिहाज आँख शौक है गो आँख छपन लायक हो तो मामलो मैं आओ दोस्त मैं हो तेमें हमेशा लाइब्रेरी या हमेशा अलमारी में किताब अड़दा इसकी शुरुआत ऐसी एनवायरमेंट से होती है। जब आप अपने बच्चे के कमरे में मेज पर आपने आप जानबूझ ही कोई किताब रखे वो पढ़े या ना पढ़े वो किताब कहीं ना कहीं उसको उस मामले में कहीं ना कहीं असरअंदाज होगी कभी ना कभी
1: बिल्कुल।
0: या मैगजीन्स का था मामला जब मैगजीन अब बहुत कम हो गए इसी तरह किताबें हैं ये जब कमरे में इस तरह का माहौल होगा तो वो जाहिर सी बात है अपना असर छोड़ेगा।
1: बहुत खूब हमारे एक साथी हुआ करते थे आज माशाल्लाह के एस ऑफिसर हैं जब वो पढ़ाई करते थे कभी ऐसा होता था कि पढ़ा नहीं जाता था उनसे तो वो फिर लेकिन किताब लेके वो हमेशा बैठते थे पते पढ़न या न पढ़न और मैं उनसे फिर पूछती थी ये तो पारो छो किताब क्या है
0: किताब क्या
1: है तो तेमस तोर वाना कि मैं छु बोर्ड बॉय वाना अगर नहीं से किहन चोन धोन पार से किहन अखबार उठते फिर अगर तुम कुछ नहीं सीखोगी कम से कम एक लफ्ज जरूर सीखोगे वो एक लफ्ज काफी है जिंदगी के लिए। वनस आखिरी क्या मिनट बचे मत प्रोग्राम मन अख पैगाम तुम्द रोजी व्यक तम कत कर हालांकि कथा रूद बाकी लेकिन आपके आपके हिसाब से कोई एक ऐसा पैगाम
0: सेठा सेठा शुक्रिया यहां बह त्रे पॉइंट
1: जी
0: पैगाम के हवाल कर बो पानस कहुस वालद मे पान बच तो पे माशरिक पे अजीज रुफका सारी ये वादी गुलपोश

ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। ठीक है, 11:30 हो रहे हैं, हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। ये छ आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम 268.1 मीटर तो FM 103.5 MHz पर। सभी में पेशा करते रहो फनकार गुलाम मोहिद्दीन शेख तहमनवाई मनीष मुझे तो कलाई में शमस फकीर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा का सबसे प्रभावशाली जनसंपर्क कार्यक्रम मेलबर्न के मावल स्टेडियम में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा, जिसमें लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 10 लाख भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु बताया।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहु सांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
2: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा

0: साथ पहली जो रिक्वायरमेंट थी बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक में आज बढ़त का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 803 अंक बढ़कर 77,545 जबकि निफ्टी 243 अंक की बढ़त के साथ 24,205 पर पहुंच गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रुपए का मुशायरा दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदु कंवल चीब ने जिला के एस के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुतलका एजेंसियों को हिदायत दी कि वो जारी काम को बरवक्त मुकम्मल करें, जिससे जिला में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तकम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर बडगाम अतर आमिर खान ने होकरसर वेटलैंड की जारी हदबंदी की पेशरफ्त का जायजा लिया। एक मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने इस अमल के लिए दरकार जमीन की तस्दीक, हदूद की तय, जियो मैपिंग और मुतलका रेवन्यू और सर्वे रिकॉर्डों की दस्तियाबी का भी जायजा लिया। इसी दौरान जिला इंतजामिया बड़गाम ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला भर में कई बेदारी और शजरकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया। इन इकदाम के जरिए मुनशियात से पाक मुआशरे की तामीर के तय आवाम को बेदार किया जा रहा है, ताकि मुनशियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दें, खुदा हाफिज़।

0: ٲس مُجیٖبہ اَختر، یِمو ؤنۍ واریاہ بہتریٖن کَتھٕ تہٕ وۄمید چھِ کہِ أسۍ عملاوو یِم تہٕ کَرو سَپدو اَمہِ سۭتۍ مُستفیٖد. أسۍ سۭتۍ ووت سانہِ أزکہِ پرٛوگرامُک وق اَنٛد، ٲسِنۍ اِجازت، خُدا حافِظ.
1: ماجہِ بیٚنہِ آسہٕ پَنُن من پسنٛد پروگرام بوزان بزمے نِسواں. أزیُک پروگرام اوس تُہنٛدِس خدمتس منٛز پیش کران روی نِساہا. پروگرامٕچ مہمان ٲس مُجیٖبہ اختر تہٕ معاوِن شوکت علی، پیشکش سمیٖنا شاہ. سٲنِس دٔیمِس اعلانس پرٛٲرِو یہِ آکاش وانی سری نگر ہیم میٖڈیو 268.8 میٖٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. دن کا ایک بجے چاہتا ہے اب آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کا بلٹن اب سے تھوڑی دیر کے بعد ریلے ہوگا.
2: نمسکار، آکاش وانی سماچار کے ساتھ میں کنک لتا. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है. यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे. यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया. इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की. प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की. श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया. प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं. इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे. दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे. किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी. और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से. मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
3: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफ़ी जोर शोर से चल रही है. प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फ़र्क है ऑकलैंड में. उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं. भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफ़ी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है. और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है. और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं. कुल मिला के भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. जी कनक,
2: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू. नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की. इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई. नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई. उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया. हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने बताया है कि आज

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
1: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओ, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
1: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
1: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
1: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
2: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
1: श्रोताओं, ठीक उस समय

0: वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
1: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
0: श्रोताओ एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
1: उस समय वो हजारों कीटों कवकों पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
0: सचमुच श्रोताओ एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है लेकिन मानो कहता है मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
1: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
1: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए।
0: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
1: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: प्यारा भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी, और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने, सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार, गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।
2: सुने सुने सुने, क्या सुने, सुने।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदयभद्र। उदयभद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदयभद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।
2: अरे भागो, भागो, जाओगे। अरे भागो, अरे अरे सिपाही आ गए। अरे अरे बाहर जाओगे। अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे
0: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।

छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ।

उरु की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर सिकंदर।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
4: ऐसा ही होगा।
3: ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
3: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए। हम
0: मैसिडोनिया चलो,
3: वापस चलो
0: सम्राट।
1: सुनो मेरे वीरों,
3: अरे कुछ तो सबर करो साथियों। जब यहां तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूं।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य। धन्य हो आचार्य।

मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस

0: अरे
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया, तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
2: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहां प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल, एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
1: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
2: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमय बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर।

0: मौर्य कालीन पाटलिपुत्र, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: जी सुमन, आप समझ कर रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम NCERT उमंग।
4: ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी

जी सामीन, आप सुन रहे थे नातिय कवाली, पेश कर रहे थे अजीज अहमद खान वारसी कवाल और साथी, कलाम था दाग दहलवी का। ये आकाशवाणी श्रीनगर है मीडियो 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर, ठीक 1:50 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन अब से थोड़ी देर के बाद।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो रोजा दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वो न्यूजीलैंड के अपने हममनसब से बातचीत करेंगे। मरकज ने ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं के जाब्ते बनाने के लिए नशीली अशिया के जाब्तों में तरमीम की है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जिनसी तशद्दुद से मुतालिक तनाजे की सख्ती से मजम्मत की है और इसे जंग और दहशतगर्दी का आलाकार करार दिया है। IMD ने आज उत्तराखंड में शदीद से बहुत ज्यादा शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और खवातीन के क्रिकेट में आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी वन ऑफ टेस्ट मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के दो दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच गए हैं। जनाब मोदी न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे, जिसमें गुज़श्ता दो साल में खासतौर पर तिजारत, कॉमर्स और दिफा के शोबे में नुमायां पेशरफ्त हुई है। जनाब मोदी का न्यूजीलैंड का यह दौरा पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा है। जनाब मोदी मुमताज कारोबारी और खेलों से वाबस्ता शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम अपने इस दौरे में भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का अपना तारीखी और इंतहाई अहम दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस तरह उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया जामे दिफाई शराकत दारी के लिए मुस्तकबिल की राह हमवार कर दी है। आला इख्तियाराती दफ्तरों से लेकर मशहूर जगह तक के इस दौरे से दोनों बड़े जमहूरी मुल्कों के दरमियान सिफारती, इक्तसादी और सलामती से मुतालिक ताल्लुकात को फरोग हासिल होगा। वजीर आजम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी एल्बनीज की इस बातचीत से जामे इक्तसादी ताउन के मुआहदे CECA से मुतालिक मुजाकरात की रफ्तार में तेजी आएगी। इस दोतरफा बातचीत में माहौल के लिए साजगार तवानाई पर खास तवज्जो दी गई है, जिसके तहत भारत को ऑस्ट्रेलिया की तवील मुद्दती यूरेनियम सप्लाई के लिए बंदोबस्त को कतई शक्ल दी गई है। इस तरह 2014 के बुनियादी फ्रेमवर्क का यादा किया गया है। बातचीत में दिफाई सलामती पर भी खासतौर पर तवज्जो मरकूज की गई, जैसा कि दोनों समंदरी मुल्कों ने दिफा और सलामती से मुतालिक तावुन नीज एक आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के लिए समंदरी सलामती के इश्तराक के खाके को भी मुश्तरका ऐलानिये की शक्ल में मंजूर किया। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुकात बरकरार रखते हुए वजीर आजम ने अपोजिशन के रहनुमा एंगस टेलर से भी मुलाकात की। उन्होंने जनाब मोदी को अपने मुल्क का एक सच्चा दोस्त करार दिया। उन्होंने बैन अलावामी शमसी इत्तेहाद और पुरअमन यूरेनियम बरामदात जैसे बुनियादी इकदाम की हिमायत की। ये दौरा मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलों की सिफारतकारी की शक्ल में इख्तिताम पजीर हुआ। दोनों रहनुमाओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेलकूद से मुतालिक इश्तराक के खाके का भी बाकायदा आगाज किया, जिससे खेलकूद और बुनियादी ढांचे को फरोग हासिल होगा। जैसा कि भारत 2030 के दौलत मुश्तरका खेलों और ऑस्ट्रेलिया 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है। तफसील हमारी नामनिकार से।
1: इस यादगार सरकारी दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की वजह से महज सिफारती सरगर्मियों ने मरबूत और कसीर सतही इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसके तहत सनती कारोबार में इजाफा हुआ है, आला टेक्नोलॉजी वाले दिफाई खाकों को बेहतर शक्ल मिली है, ख्वाह वो न्यूक्लियाई सप्लाई का बंदोबस्त हो या MCG में खेलकूद की सिफारत हो। दोनों मुल्कों ने भारत बहरुल काहिल इस्तेकाम के लिए एक राहदारी मुकर्रर कर दी है। अपने दौरे के इख्तिताम के बाद अपने तीन मुल्कों के दौरे के अगले तारीखी मरहले के तहत वजीर आजम बराह रास्त न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड पहुंच गए हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: मरकजी हुकूमत ने नशीली अशिया के 1945 के जब्तों में तरमीम

0: www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर है मीडियम 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ठीक 2:15 हुए हैं. लीजिए अपेक्षा चंद फिल्मी नग में समाप्त कीजिए प्रेम बंधन से ये गीत महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर के खूबसूरत आवाजों में आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत.

आए अब सुनते हैं आखिर में फिल्म गुना से ये गीत रूपमा राठौड़ साबरी ब्रदर्स और साथियों की आवाजों में गीत संगीत आनंद राज आनंद का।

जय हिंद। फौजबाई फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेके मैं हूं आपके रेडियो सखी सूफी फातिमा आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम का पहला नजराना आपकी नजर फिल्म

दिल एक मंदिर से ये टाइटल गीत सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की खूबसूरत आवाजों में अनजान के बोल। शैलेंद्र के बोल शंकर जय किशन के संगीत में है।

जी दोस्तों, समझ कीजिए फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में शंकर जय किशन के संगीत में।

जी दोस्तों, आपने फिल्म अनदाता से गीत सुना मुकेश की आवाज में। अब सुनते हैं रवि के संगीत में गीत आशाताई की आवाज में, फिल्म आदमी और इंसान से।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: जय बाबा बरसानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
2: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
1: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग ना हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहनें। पर्यावरण की पवित्रता बनाए भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल

0: सहायता लें।
1: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: जी दोस्तों, वक्फे के बाद आपका स्वागत करते हैं फिल्म संगीत के प्रोग्राम में। समाप्त कीजिए फिल्म गीत से, ये नगमा मोहम्मद रफ़ी और आशा ताई की आवाज़ में।

जी, दूसरे प्रोग्राम का आखिरी नजराना आपके नजर फिल्म सफर से ये गीत मनरे और साथियों की आवाजों में हिंदी वर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: यी आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियो 268 मीटर और FM 103.5 मेगा हर्ट्स पर सत्तर के 3:50 हो रहे हैं। अब यहां से उर्दू खबरें नशर होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख यासीन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर अजम तीन मुल्कों के दौरे के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे न्यूजीलैंड। अपने हम मनसब के साथ करेंगे कई मामलात पर तबादले ख्याल। जम्मू कश्मीर को दहशत पसंदी से पाक किया गया है, वजीर दाखिला। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बालतल का दौरा, यात्रा के आसन इनकाद पर किया इत्मीनान का इजहार। और खिदमत सेंटर एसोसिएशन का वफद वजीर आला से मुलाकी, मराकीज के कामकाज पर हुआ तबादले ख्याल। पेश है खबरों की तफसील। वजीर अजम नरेंद्र मोदी, जो कि तीन मुल्कों के दौरे पर हैं, आज अपने दौरे के आखिरी पड़ाव पर न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंच गए। नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लेक्सन के साथ बाहमी दिलचस्पी के कई मामलों पर

0: बाद ख्याल करेंगे। ये चार दहाइयों के बाद किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का न्यूजीलैंड का दौरा होगा। नरेंद्र मोदी ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के बाशिंदों के एक इजलास के अलावा वहां रह रहे भारतीय नजाद शहरियों से भी खिताब करेंगे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहदें, खुशहाल सरहदी खत्ते और एक खुशहाल मुआशरा एक साथ मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। कौमी राजधानी नई दिल्ली में सरहदी रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों के SSPs के साथ मुनक़दा एक मीटिंग से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और शुमाल मशरक खत्ते को दहशत पसंदी से पाक किया गया है, जो कि एक इज्तमाही कामयाबी की अलामत है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बहुस्न खूबी जारी है और आज भी बालतल और चंदनवाड़ी के बुनियादी कैंपों से कई हजार यात्री पवित्र गुफा की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। आज दोपहर 1 बजे तक मजीद 16,833 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। इस तरह आज दोपहर तक दर्शन करने वाले यात्रियों की मजमू तादाद 1,75,000 से ज्यादा हो गई है। दरियासना जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज 8,800 श्रद्धालुओं पर मुश्तमिल नौवां काफिला वादी पहुंच गया है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बालतल का दौरा करके वहां यात्रियों को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब के मुताबिक LG ने पहले 7 दिनों के दौरान यात्रा के आसन इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए LG ने कहा,
1: जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो, इसकी हर कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में देश भर के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छे अनुभव लेकर के जाएंगे। यात्रा का जहां धार्मिक महत्व है, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी इस यात्रा के कारण काफी सहयोग मिलता है। जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं वो भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं, काफी अच्छे इंतजाम टेंट में है, सुरक्षा का भी काफी ध्यान दिया गया, फायर एक्सटिंग्विशर हर टेंट में रखे जाए, व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि व्यवस्था की दृष्टि से भी एक अच्छी यात्रा मानी जाएगी।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू सूबे के उधमपुर जिले में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर तोलडी नाला के करीब एक गाड़ी को हादसा पेश आने के वाकये का सख्त नोटिस लिया है। इस हादसे में श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जा रहे मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 6 श्रद्धालु जख्मी हो गए। जख्मी यात्रियों को इलाज मुआवजे के लिए GMC जम्मू में दाखिल किया गया है। LG ने जख्मियों को बेहतर से बेहतर तबी सहूलियात दस्तियाब रखने की हिदायत दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दोनों रास्तों पर सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर ने 400 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को तैनात किया है। कुलगाम के हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने खबर दी है कि महकमे ने यात्रा रूट्स के मुख्तलिफ मकामात पर 275 बैतुल खला नस्ब किए हैं। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर के डायरेक्टर काजी सरवर ने कहा कि सफाई कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वो इस सिलसिले में अपना ताउन दें।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए हम हर वक्त सफाई का एहतमाम करते आ रहे हैं और इस साल भी हमने खुसूसन जो हमारे ट्रांजिट कैंप आ रहे हैं उसमें काजीगुंड है या वॉलनट फैक्ट्री है, मटन है या उसके अलावा नुनमन बेस कैंप है, उसमें हमने एडिशनल लगभग हमारे पास 400 सफाई मित्राज हैं जो इसके लिए हमने तैनात किए हैं। इसके अलावा हमारे पास 250 बाथरूम्स और टॉयलेट्स बना के रखे हैं। इसके अलावा रिक्वेस्ट करते हैं कि पॉलिथीन बैग्स यूज़ ना करें और हमने जो इनको बहुत सारी जगह हमने रिप्लेसमेंट के लिए जूट बैग्स भी इनको दिए हैं। ये पॉलिथीन का है ये हम टोटली क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको बैन किए हैं अपने ULVs में।
0: विजयपुर के MLA चंद्रप्रकाश गंगा और बसोली के MLA प्रशांत कुमार ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात करके अपने अपने इलाकों के अवामी मसाइल उनकी दानिश में लाए। दरियासना फेडरेशन इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू के चेयरमैन तरुण सिंगला के अलावा साबिक DDC मेंबर इनायतुल्ला राथर की सरबराही में फैसल कुलगाम से आए हुए एक वफद ने भी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उधर श्री देवनाथ मठ और श्री नाथपीठ के पीठाधीश आचार्य स्वामी श्री जितेंद्र नाथ महाराज ने भी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मेंबर सुरेश हवारे के हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। خدمت سینٹر ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے آج وزیراعلی عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی. وفد کے ارکان نے خدمت مراکز کے کام کاج اور لوگوں کو ان مراکز کے ذریعے فراہم

ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियो 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सफर के 4 बज चुके हैं। नष्ट होता है आज का पहाड़ी प्रोग्राम।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर तो अज दा पहाड़ी प्रोग्राम गेन का मैं हाँ तुस्ती मेज़बान गजाला मुमताज सामीन तुसा सारियां को प्रोग्राम भी जी आया को आखती हर कदे आओ ते प्रोग्राम दी शान बधाओ सामीन अज जुमा मुबारक ते आओ प्रोग्राम दी शुरुआत करदे आ इस नातिया कवाली नाल आवाज़ अब्दुल रशीद कुरैशी ते साथियां दी।

0: आकलैंड बिच न्यूजीलैंड दे रहने आले लोकां दे इजलास तो इलावा उत्थै रहे भारतीय शहरियां नाल भी खिताब करसनगे। इस तो पहला वजीर आजम सुन इंडोनेशिया और आस्ट्रेलिया दा अपना कामयाब दौरा पूरा कीता। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह सुनक है कि महफूज सरहदां खुशहाल सरहदी खत्ते और एक खुशहाली मुआशरे मिल के मुल्क को महफूज बना सकते हैं। कौमी राजधानी नवी दिल्ली बिच सरहदी रियासत और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों के एस एस पीज के नाल मुनक्किदा एक मीटिंग के नाल खिताब करते हुए अमित शाह सुन आख्या कि जम्मू कश्मीर और शिमाल मशरक खिते को दहशत पसंदी तो पाक कीता जुलसीगा जड़ा एक इज्तमाई कामयाबी की अलामत है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा असल तरीके चल रही है और अज भी बालताल और चंदनवाड़ी के बुनियादी कैंपा बिचू हजार यात्री पुत्र गुफा की तरफ झुल रहे हैं। अज दोपहर एक बजे तक मजीद 16,833 यात्री सुन पुत्र गुफा बिच हाजरी दी। इस तरीके अज दोपहर तक दर्शन करने वाले यात्रियों की इकट्ठी तादाद 1,75,000 तो ज्यादा हो गई है। इसी दौरान जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास तो अज 8,800 श्रद्धालुओं ते मुश्तमिल नौवां काफिला वादी बिच पहुंच गया। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गोनन मनोज सिन्हा आज बालताल का दौरा करके उत्थे यात्रियों को दी ज्वेलरी सहूलतों का जायजा किया। अस्ते नुमाइंदे साबिर अयूब के मुताबिक एलजी सुन पहले 7 दिहाड़ियों के दौरान यात्री के असल इनकार ते इतमान का इजहार किया। मीडिया नुमाइंदियों के नाल गल करते हुए उन्होंने सुन आख्या
1: जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो इसकी हर कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में देश भर के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। यात्रा का जहां धार्मिक महत्व है मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी इस यात्रा के कारण काफी सहयोग मिलता है। जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं वो भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं। काफी अच्छे इंतजाम टेंट में है। सुरक्षा का भी काफी ध्यान दिया गया। फायर एक्सटिंग्विशर हर टेंट में रखे जाए व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि व्यवस्था की दृष्टि से भी एक अच्छी यात्रा मानी जाएगी।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन जम्मू सूबे के उधमपुर जिला बिच श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा तय टोलडी नाला के करीब एक गड्डी को हादसा पेश आने के वाके तय डेढ़ा नोटिस आया। इस हादसे बिच श्री अमरनाथ जी यात्रा तय जुल रहे मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने आए 6 श्रद्धालु जख्मी हो गए। जख्मी यात्रियों को इलाज वास्ते GMC जम्मू भी दाखिल किया गया। एलजी सुन जख्मियों को असल तो असल सहूलत देने की हिदायत दी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दुआ राहों ते सफाई सुथराई को यकीनी बनाने वास्ते अर्बन लोक बॉडीज कश्मीर सुन 400 ज्यादा सफाई कर्मचारी को तैनात किया है। कुलगाम के अस्ते नुमाइंदे खुर्शीद पडू सुन खबर दी है कि महकमे सुन यात्रा रूट्स ते मुझ सारे मुकाम तय 275 बैतुल हुला दिते। अज आकाशवाणी श्रीनगर के नाल गल करदे हुए अर्बन लोक बॉडीज कश्मीर के डायरैक्टर काजी सर्वस सुन आख्या कि सफाई कर्मचारी दिहाड़ी रात काम कर रहे हैं। उन्होंने सुन यात्रियों को अपील की है कि वो इस सिलसिले में अपना तावन देवन।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए हम हर वक्त सफाई का एहतमाम करते आ रहे हैं और इस साल भी हमने खुसूसन जो हमारे ट्रांजिट कैंप आ रहे हैं उसमें काजीगुंड है या वॉलनट फैक्ट्री है मटन है या उसके अलावा नुनमन बेस कैंप है उसमें हमने एडिशनल लगभग हमारे पास 400 सफाई मित्राज हैं जो इसके लिए हमने तैनात किए हैं। इसके अलावा हमारे पास 300 बाथरूम्स और टॉयलेट्स बना के रखे हैं। इसके अलावा रिक्वेस्ट करते हैं कि पॉलिथीन बैग्स यूज़ ना करें और हमने जो इनको बहुत सारी जगह हमने रिप्लेसमेंट के लिए जूट बैग्स भी इनको दिए हैं। ये पॉलिथीन का है ये हम टोटली क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको बैन किए हैं अपने ULVs में।
0: विजयपुर के MLA चंद्र प्रकाश गंगा और बसूली के MLA प्रकाश प्रशांत कुमार सुन कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के नाल मुलाकात करके अपने इलाके के आवाम के मसले उन्हां दी सामने रखे। फेडरेशन इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू के चेयरमैन तरुण सिंगला तो इलावा साबिक DDC मैंबर इनायतुल्ला राथर की सरबराही बिच कुलगाम तो आए हुए वफद सुन भी मनोज सिन्हा के नाल मुलाकात की। इधर श्री देवानाथ मठ और श्रीनाथ पीठ के पीठाधीश आचार्य स्वामी श्री जितेंद्र नाथ महाराज सुन भी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मैंबर सुरेश हवारे दे नाल लेफ्टिनेंट गवर्नर नाल मुलाकात की। खिदमत सेंटर एसोसीएशन के एक वफद सुन अज वजीर आला उमर अब्दुल्ला दे नाल मुलाकात की। वफद दे अरकान सुन खिदमत मराकज के कामकाज और लोगों को इन्होंने मराकज के जरिए दी जुल रही खिदमत

आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर 4:30 हुए हैं। पेशे खदमत है आज का पंजाबी प्रोग्राम।

कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करे कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: करामा कैद हो गया रह जाऊंगा, बुज दिल समझेगा लो कामना।
1: हाय
0: बुज दिली की जिंदगी हूं नहीं जी सकतो अब्बा।
1: ओ गल बुज दिली की नहीं बांडी की है, नू भी या जगह मिन्ना ठीक नहीं लग रही, इस जगह तू मिन्ना लौगी मुश्का रही अरे लौगी।
2: मैं बाप की गल मान ले बच्चा, अमना के लोड़ा उत बांडी चाड़नगी, हूं तो कहूं हम किसी दूरी जगह चले जाऊंगा, कहां वास्ते कजीना फसनो है ने
0: जगह बदलना के वैगो मेरी माए, इस नल के जालम बाज आ जाएगा, शोकार अपनी आदतों तू बाज आ जाएगा, मर्द अपना कोल तू पीछे नहीं हटता, यो सबक वे तो तमने ही सिखायो थोनो मीना।
1: वर मीना या बांडी तेरा सिर को काल लब रही अरे नूरिया, या जगह भी पारी है ते अगे पारो पानी ते पशुआली बुजुर्ग की जगह है।
3: पाई को दिल निको क्यों करे अबा, जो खुदा ने मंजूर वैगो इले बांडी चढ़ेगी पाई, पूरो ग्रां थारा नाल है।
0: यो पूरा ग्रां की इज्जत को सवाल है, तुम फिक्र न करो अब्बा जी, ख्वाजे बकरो चढ़ूंगो ते पीरां के न्याज भी दियूंगो, वर बंडी हिलमा ही चढ़ेगी, यो मेरो अटल फैसलो है।

0: गाती रहेंगी जे काम भी करेंगी। अजा यो इतनो बड़ो पसारो लिपनो है।
1: लिपनो ही नहीं अम्मा, छांटनो भी है, फूल भी काटना है, आखिर मुकद्दम को ब्याह है।
0: ब्याह ते अपना बच्चा को गज बज कराऊंगी, लोग भी याद रखेगा किसे का ब्याह मांगिया था। मैं भी सारा ग्रां आला सद्या वाए।
1: हे अम्मा, वे नारगज जमींदार भी सद्या वाए।
0: खुशी गमी सब किसान जीवे हैं बानो। फिर नूरा को ब्याह कोई मामूली ब्याह थोड़ो है, मकदम बाजागा पूत को ब्याह है। इसमें तो राजा की सरकार थोड़ी साधोगी वो है।
1: पर मिन्ना नहीं लगतो वे आवेगा, उनके बारे पुठी सीधी गल सुन मावे।
0: देख बानो, मारो काम है बुलानो, बाकी उनकी मर्जी, वे आवे ना आवे।
2: किसने बुला रहे अम्मी जी?
0: नूरा का ब्याह की गल हो रही थी।
2: क्यों, थारी मर्जी नहीं पाई नूरा को ब्याह करवानगी?
0: हूं तो यह खुशी तकन वास्ते कद की डीक मा थी।
2: चलो खुशी को वेलो भी आ गयो, पालक जान चढ़ेगी। अबा और कहें जे बरात कोड़ा वर जाएगी ते सारा का सिरा वर एक रंगा चिट्टा साफा शमलेदार रहेगा।
0: हाय कद आवेगी वह कड़ी, हूं अपना नूरा की बरात तकन वास्ते बेसब्री हो रही हूं।
2: एक ही रात की ते गल है अम्मी जी, फिर रात सारी तैयारी करनी है। ओहो वो लस्सी आस्ते तोड़ियो थो, कोई मजमान आया वाए। बानो चाची लस्सी को गड़बो ते ग्लास इंजा पकड़ाओ। हाँ
1: यो लनी का मुकदम, आज सेवा कर ते पलक तेरो भी आवी इसे रा करावांगा।
2: मैं ते ब्याह करना ही नहीं।

0: अल्लाह सुना भाई बकर, कितनी प्यारी है।
1: मारी तैयारी कह देंगी, निका मुकदम को ब्याह है ते सोचो कोई नवी लीर दुकान पर ले आऊं, मुत्ता बाद जो मौको लबो है।
0: तेना केनो जाई नाल जानो है भाई, ते पांडा थाली धोनी है या पानी टोनो है।
1: ना शरीफ खान, जान को साधो मुकदम होरा ने सारा ग्रहण दो है, ते मारा मुकदम इसरा का नहीं भाई। वे पहला महाराज सा लिस्सा माड़ा वो ध्यान करें, मुकदम क्या थो सब शमलेदार साफो बद गए जाई में शामिल बेगा।
0: मीना तेरी गल्ला पर एतवार नहीं आतो भाई, ये मुकदम दे जागीरदार हम लोका ना इन ब्याह काजा मा इतनी इज्जत नहीं देता।
1: क्यों थारा दर साधो नहीं आयो?
0: साधो ते पूरा ग्रामा दे गया है, पर शामिल शायद कोई नहीं होते।
1: क्यों यरा, यो ते खुशी को मौको है।

0: सारी तेरी खट्टी है, उस वेला तू कदे जाबर खान ना कचहरी में मैस दे दे तो ते आज यहाँ दुश्मनी ना होती। इन बनांगी दुश्मनी की आग माँ हम लोग सार रहे। हाँ
1: हाँ हाँ बड़ो माहिती आयो भाई, सच सच वे ते तम लोग सच को संग क्यों नहीं करता। मुकदम बाजा ने ना उस वेला किसी नाल जाती की ते ना आज मुकदम नूरो किसी नाल बेइंसाफी करे। हम ना उनकी बड़ी डांट है, अल्लाह ऐसा मुकदमा की छतरी सिर पर हमेशा ही रखे हमारी दे यही दुआ है।
0: जाबर खान को पूत सूफी नहीं तुमियत को नरमे पर उसने चूट खाना नहीं देता, ऊपर या इलांगी बांधी पाया पतो नहीं के शामत आनेगी।
1: इलांगी बांधी, इलांगी बांधी नाल जमींदारों में के तंगी हो रही है
0: के चफेरी मारी जगह है, मुकदमा की महज नुकसान करेगी। उत उन्होंने फसल वो फैसलों की हुए
1: लोग अमन की गल करें पर जिम्मेदार अपनो ही स्वाद लावे। या बांडी पूरा गांव ना कह पाई, या पूरा गांव को।
0: अच्छा छोड़ लेना इन गर्मा ना गरीबा अखे उत बैस जितू कोई अंठाना है ना। तू दस कितनो आधार कपे हुए?
1: आधार नहीं नगद दे के आने, मुकदम और मदद इमदाद करता रहे ते वे जोड़ के रखा हुआ था। बड़ो सखी है मुकदम नूरो, बड़ो सखी है। बाप तू चार कदम अगे है।
0: और किन फजूल गल्ला मते उलझा छोड़ो, मीना चीर हो गई है, कार अड़ीकता वेगा नाले जाबर खान ने बुलायो वो है। अच्छा फिर भाई अल्लाह के हवाले है।

0: सूफी पुत्र, नूरा ने तो हिले बांडी चाड़ छोड़ी है, वर हमने भी चुप नहीं बैठनो। अपनी इस बेइज्जती को बदलो लेनु है।
1: हाँ बिल्कुल, मारा मनसूबा भी जा रही है। हमने अपनी जगह में फसल लान को फैसलो कर लियो है। नूरा की मैस फसल जाड़ेंगी तो कचहरी में उसको लू ना को लेता रहा।
0: अल्लाह
1: अपना काल जागे आग ना भी ठंडी करता रहा।
0: शाबाश शाबाश पुत्र, सोनी कुड़की लाइए, तेरा अकल की दाद देनी वेगी।
1: वर आजकल उस पास से तू को खबर शबर नहीं मिली। वो फकर उन इन्हें नहीं आतो। मैं उसना पैसा की लालच देती थी, वर उसने मेरी एक न मनी।
0: वो नहीं मन से बड़ो खरो जनू है, गरीब जरूर है, वर जबान ते कोल को पक्को उस मिठिया न ठगो। ते नाले शरीफ खान की जा जिम्मेदारी लाओ।
1: ये शरीफ खान भी कोई एतबारी जनो नहीं अब्बा, लालची जनो है। खैर वो आ गए।
2: अस्सलाम वालेकुम खान साहब, काई मेरी गल करें ता खुरे।
0: वालेकुम सलाम। हाँ शरीफ खान, तेरी गल कर रहा था, सुना कित्थो।
2: हूँ अटियां वो चले हो गयो तो सिद्धो पहले ही इतने आयो। हाँ मैं सोचो तमना सलाम कर तो जाऊं, उस फकर ने चीर लवा छोड़ो।
1: फकर ने के कह तो
2: रस्ता में मुलाकात हो गई, जाजी बनने की तैयारी कर रही है। कह तो मुकदम आलिया माजिया ते ग्राइया ना जांजवा ले जा रहे हैं।
1: नहीं मारते हो वैगो, फकर जी सा जांजी हुआ ते बाकी मोटा लोग किस छवल वेगा।
2: ना जी, कह तो मुकदम ने सारा वास्ते चिट्टा साफा माया चना के रखिया वाए। खैर हमने कह रहे नो जांज करूं, हूं ते अंदर की गाल खनोतरू थो। कह तो इलांगी बानी पूरा ग्राम को नाके।
1: अला तो ते भी आमा आम लाई रही।
2: ना जी, मैं क्यों यो नाक आप कपाऊंगो, थारी राता की नींद नाम कर छोड़ूंगो।
0: ओ चलिया, अपना मनसूबा तू दूजा ना वाकिफ नहीं करवाता होता, इसरा अगला होशियार हो जाए।
2: हां जी, हूं फकर की टरकान सुन तो रहे तो मैं ते चंगी छवाई अगे थे, थोड़ो चीर और कर तो ते चार संड छोड़नी थी। हूं तारी मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकतो।
1: मारी मुखालफत फकर कर रही
2: तोबा, वो फकर ने आई मुकदमा आरू गल करे, थारा बुआ वरु उठे नहीं बैठो। आज क्या हूं मुकदम के नाल मंजा वर बैसूआ। और ने और आज फकर ने सोतो भी नकदा हुआ आने में।

0: अच्छा, तो इतना पैसा हो गया फकर कोल भी?
1: क्या तो मुकदम होना नहीं दिता था।
0: मकदम मकदम उन पैसा और बंदा इकट्ठा करने लग गए। तू चाचा शरीफ खान मिठा रहा पटू पा ते। हाँ, नाले हिला गया क्या पीछे? फसल लाने वास्ते जना भी इकट्ठा करना है। तू आज इस काम पर लागू जा।
1: ठीक है जी, ते फिर मिन्ना इजाजत दो। ते हाँ, फिर ब्याह में शामिल होने वाले केस सोच लो। है
0: हूँ फकर नाल हम भी मांझी बनेगा। अजय यार नौबत नहीं आई चाचा, मारो कोई भी बंदो शामिल नहीं हो से। तुम जाओ अपना अपना कमा पर, पलके मुलाकात रहेगी।
1: फिर बख्शो इजाजत। ते हाँ, कोई पैसा चार लोड़े था।
0: हूँ भी हैरान थो, आज चाचा और ना लोड़ क्यों नहीं पई? ये रख लियो, वर जना पलके होना लोड़िए।
1: ओ जी, थारा ही जिंदा दे लो है, मारा चूल्हा भी ते तम ही माले। अच्छा, खुदा हाफिज़ फिर।
0: अच्छा, खुदा हाफिज़ फिर।

0: बल्ले बल्ले, आज शरीफ चाचा और की हरा पुल गया है।
1: रा पुलियो नहीं है रा, तेरी सेर लंगी थी, सोचो आज मुलाकात का नहीं आऊं।
0: सदके अपना चाचा वरू आज किसे मार वे रहा।
1: तेरी यही आदत है मिन्ना प्यारी है, वो भी खुश तुम्हें ध्यान हुआ
0: ना। आज के गम हो गया है, जे मिठा की लोड पै गई कोई तार शारता नहीं लेनी।
1: नहीं नहीं मिठिया, मेरी उम्र उन तार लेन की नहीं, यो कम थारा जैसा जवाना हुआ है। के सोनी जवानी है तेरी, मार किस काम की।
0: क्यों के हो मेरी जवानी ना, ये देख चाचा, तकड़ा तकड़ा जना भी बाँ नहीं छड़का सकता। चाचा बाँ पकड़ा को
1: मजाक ना छोड़।

0: तेरी बाई पकड़ने आयो तू, सारी उम्र इसे गुआ मां सड़ गल जाएगो मिठिया, दूजा के नाल नाता भी रख ते मेरा आरू ऐश करे वो ऐश।
1: हूँ समझ नहीं, किसा नाता किसके नाल नाता जोड़ू?
0: सूफी नाल, सूफी नाल माना माल कर छोड़े वो।
1: अला ते या गल है, हूँ मुकदम मामा ना छोड़ गए तेरा सूफी का टुकड़ा खाऊं, हूँ निमे करामी करूं?
0: मैं का दिया गल कहीं इतना ही रो और उन्हें भी आम जान रख, ए नमाशन में फिरो मार चुनो।
1: बस चाचा बस, अगर एक लफ्ज ना बोलिए नहीं तो इतना ही मेरा तू बेइज्जत हो जाएगा।
0: तू मंदो जान गयो ना, चलो है तू भाई इतनी गल दसन नाल तिना कदे पैसा लबे ते के आ जाए ते किनो कूड़ मारनो है ते फिर मुकदम ने
1: चल चले जाए। तू अगर ना बोलिए अपना सोफी न किए मुकदमा का माजी इतना नमक रामी नहीं होता, तेरी उम्र को लिहाज ना होता था सर दंद हूं थोड़ी ढेर किया बहुता है बढ़ाया कंसोल है नाला कही उसना थारा वास्ते मिठो ही काफी है, मुकदम रुक माऊ तम सारा ना।

0: वालेकुम सलाम चाचा, इस वेला केड़ा पास है तू?
1: शरीफ खान की एक पैनी आदत है, जे वो कोई काम भी पालक पर नहीं छोड़तो। मैं दीगर वेला मीठा मांझी ना बैग में पंगड़े तो।
0: अच्छा, के कह तो मिठो?
1: तोबा तोबा खान साहब, उसका पैर भी धरती पर नहीं लगता, आसमान दर उड़ के गिठ लम्बी जबान है उसकी।
0: ना चाचा, क्या क्या है वो?
1: कहो के तो उसने यू ही मैं तारो क्यों जे वेलो कट गए मिल आइए, मर्ची लग गई बिना मार मर आ गयो वो, ते हूँ खींच गयो, नहीं ते आज उस जना ने मेरो काम का नहीं छोड़ो। तो
0: कोई पैसा चार दसना था ना?
1: दसना के जी हूँ ते गोजा में कलू थो, पर उसके जिसरा कहिए जे डड्यार लड़ गया वे, के लगो सूफी ना कहिए हूँ एकलो ही तारा वस्ते काफी हाँ।
0: गुस्सा ना चढ़ा उसकी या मजार, उसने मेरो प्यार तक किया कैर नहीं, मैं सोचो थो सीधी अंगली नाल की निकल जाओ, हूँ अंगली टेढ़ी करनी पैगी चाचा।
1: हूँ के जी इस रात है हमना मुकदम का मांझी ही नहीं जीन दे से।
0: इसको इलाज है मेरे कोल, रात जना सट के बोरी में बद के ले आवांगा, आपे खुरड़ी रगड़ाओ।

नूरा मुकद्दम और मबनी यो रेडियो ड्रामो तम समात कर रहा था, बहुत खूबसूरत। इसकी तीजी किस्त जड़ी अब हम किसी अगला प्रोग्राम में ज़रूर पेश कर गया, इस ड्रामा ने मुकम्मल करांगा। तो सजनों अदब माँ आज इतनी गुंजाइश पैदा हो गई है कि वो समाज का किसी भी कोना ना अपने अंदर समो सके, बल्कि अदब एक ऐसो समुंदर हो गया है जिसमें मौजूआत जिसमें मसाइल तमाम यकजा हो गए। अवामी कारगुजारी अवामी खिदमत को जड़ो जरियो है उसने पेश कर रहे हैं। तो वाकई गोजरी अदब भी अपना मयार

ना बेहतर बनाने की तरफ रवा दवा है। तो इस वास्ते जितना तालीमी इदारा यूनिवर्सिटीज रिसर्च सेंटर्स गोजरी जबान का फरोग वास्ते काम करेंगे, ज़्यादा तो ज़्यादा इस जबान की पकड़ भी होगी, इस जबान को अदब भी मयारी भी होगा और इस जबान ना फरोग भी लगेगा। मगर हनूज यह जबान जी है अपना 8वां शेड्यूल वास्ते कोशिश कर रही है कि इस ना वो मरतबो हासिल हो, चूंकि यह हिंदुस्तान की बड़ी जबानों में एक है जड़ी कई रियासतों में कई खित्तों में बोली जाए, और इस जबान को अदब भी बड़ो मयारी है, इसकी तारीख भी बड़ी सुनहरी है, तो इसका लिखन वाला भी बड़ा कमाल ते बड़ा नामवर लोग रहे हैं। तो यह जबान अजू भी अपना हकूक वास्ते लड़ रही है, तो और लोग जड़ाई बोलने वाला वे बड़ा सब्र के नाल अतमीनान के नाल उड़ीकवानी कि कदिया जबान अपनों जड़ो सरकारी मरतबो है वो हासिल करेगी। तो सजनों गीत थरी खिदमत में पेश करांगा।

लारा खाचे च ही आवाज़ में तम सुन रहा था गीत तो सजनों अदब न मैज किसी एक जाविया तोड़ी महदूद रखनों भी का इंसाफ वाली गल नहीं मैज एक आसान जो रस्तों चुन गया यानी कि या तो मैं गज़ल दर या ना आम तौर पर नज़म दर तम लोगों ने मुतवजा देखी या सियारफी वाली बखी को मजेद रुझान है उसमें भी बड़ा आम जा सतही मौजूआत को इंतखाब नहीं करना चाहिए बल्कि अज जो अदीब होवे ये एक समाज को पारख होवे इसने की कि इसमें एक रग समाज जो ज्यादा होवे सोचने की सलाहियत ज्यादा होवी हसास मिजाज हसास तबीयत होवे उसने समाज का तमाम मसाइल ना अपनी कलम के जरिए अवाम के सामने हुक्काम बाला के सामने और उन लोगों ने जिन्होंने वो मुखातब करना चाहे उन्होंने अपनों माफियत ज़मीर और अवाम को माफियत ज़मीर पेश करे ता जाके अदब की सही जड़ी खिदमत है वह मुमकिन हो सके ते मेरी यह गुजारिश है थारा के कि अदब ना अदब का तरीका पर देखने की लोड़ होवे अदब ना कदे भी किसी इंतशार को किसी आपसे भीड़ पाड़ को आपसे रंजश को जरियो नहीं बनाना चाहिए बल्कि जबान सारा की सांझी होमी हाँ जबान निक्की बड़ी ज़रूर हो सकें काय जबान ज़्यादा मिठी हो सके किसी में उतनी मिठास नहीं हो सकती बहरहाल जबान ना मिठी बनाने में अदीब फनकार बोलन वाला समझन वाला लिखन वाला पढ़न वाला सारा शामिल होवे।

इसके नाल ही गोजरी प्रोग्राम को बड़ा मुकन आवे। गोजरी प्रोग्राम का प्रोड्यूसर है वसीम फारूक वानी, ते अपना मेजबान अल्ताफ निजामी ना अगली मुलाकात तोड़ी बख्शो इजाजत। चलां जी फिर, रब रखो।

अभी आप गोजरी प्रोग्राम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:50 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप गोजरी में खबरें सुनेंगे।

0: पहुंच गयो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बालताल बेस कैंप को दौरा कर गए। श्री अमरनाथ यात्रा का इंतजाम को जायजो लियो। मारा नुमाइंदा साबर अयूब के मुताबिक एलजी ने इस मौका पर यात्रियों नाल मुलाकात भी की। एलजी ने कहा कि इंतजामिया पुलिस फौज नीम फौजी दस्ता श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ते दूजा मुतलका इदारा का इश्तराक के नाल यात्रा गापुर पुरअमन महफूज एहसन इनकाद वास्ते जामे इंतजाम किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिहायश सफाई तिबी सहूलियात दूजा बुनियादी इंतजाम को मायनू करता हुआ क्योंकि बालताल ते चंदनवाड़ी माँ कायम 100 बिस्तर पर मुश्तमल अस्पताल यात्रियों ना मियारी तिबी खिदमत फराम कर रहे हैं। एल जी ने मीडिया नाल गल करता हुआ यात्रियों का हवाला नाल कियो।
1: जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो इसकी हर कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में देश भर के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छे अनुभव लेकर के जाएंगे। यात्रा का जहां धार्मिक महत्व है मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी इस यात्रा के कारण काफी सहयोग मिलता है। जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं वो भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं। काफी अच्छे इंतजाम टेंट में है। सुरक्षा का भी काफी ध्यान दिया गया। फायर एक्सटिंग्विशर हर टेंट में रखे जाए ये व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि व्यवस्था की दृष्टि से भी एक अच्छी यात्रा मानी जाएगी।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू सूबा का उधमपुर जिला मां श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर टोलडी नाला के करीब एक गड्डी ना हादसों पेश आने का वाका को सख्त नोटिस लिए हुए। इस हादसा मां श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जा रहा मध्य प्रदेश नाल ताल्लुक रखने वाला 6 श्रद्धालु जख्मी हो गए। जख्मी यात्रियों ना इलाज मुआवजा वास्ते GMC जम्मू में दाखिल किए गए। एल जी ने जख्मियों ने बेहतर तो बेहतर तबी सहूलियात दस्तियाब रखने की हदायत भी दी। श्री अमरनाथ जी यात्रा का दुआ रस्तों पर सफाई सुथराई ने यकीनी बनाने वास्ते अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर ने 400 तो ज्यादा सफाई कर्मचारियों ने तैनात किया है। कुलगाम का हमारा नुमाइंदा खुर्शीद पड्डो ने खबर दी है कि महकमा ने यात्रा रूट्स का मुख्तलि मकाम पर 275 बैतुल खुला भी नसब किया है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करता हुआ अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर का डायरेक्टर काजी सरवर ने कहा कि सफाई कर्मचारी तैड़ी रात काम कर रहे हैं। उन्होंने यात्रियों तो अपील की कि वे इस सिलसिले में अपनी तावन दें।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए हम हर वक्त सफाई का एहतमाम करते आ रहे हैं और इस साल भी हमने खुसूसन जो हमारे ट्रांजिट कैंप आ रहे हैं उसमें काजीगुंड है या वॉलनट फैक्ट्री है मटन है या उसके अलावा नुनमन बेस कैंप है उसमें हमने एडिशनल लगभग हमारे पास 400 सफाई मित्राज हैं जो इसके लिए हमने तैनात किए हैं। इसके अलावा हमारे पास 250 बाथरूम्स और टॉयलेट्स बना के रखे हैं। इसके अलावा रिक्वेस्ट करते हैं कि पॉलिथीन बैग्स यूज न करें और हमने जो इनको बहुत सारी जगह हमने रिप्लेसमेंट के लिए जूट बैग्स भी इनको दिए हैं। ये पॉलिथीन पे ऑलरेडी उसको बैन किए हैं अपने ULVs में।
0: ये खबर तमाम आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबर तमाम आकाशवाणी का मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से DTH पर भी सुन सकें। खिदमत सेंटर एसोसिएशन का एक वफद ने आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला के नाल मुलाकात की। वफद का इरकान ने खिदमत मरकज का कामकाज ते लोकां ना इन मराकज के जरिए फराम की जा रही खिदमत का बारा में तफसीली जानकारी भी दी। जल शक्ति का वजीर जावेद अहमद राणा ने आज सिविल स्ट्रेट श्रीनगर में वजीर आला का मशीर नासर असलम वानी के नाल मुलाकात एक आला सतह की मीटिंग में आपाशी फ्लड कंट्रोल महकमा की कारगुजारी को जायजो लियो। वजीर ने कश्मीर खत्ता में इंसदाद सैलाब का बुनियादी ढांचा न मजीद मुस्तकम करने की जरूरत पर जोर दी। उन्होंने खसास इलाकों पर खसूसी तवज्जा मरकूज करने की भी हदायत दी। मीटिंग में महकमा की तरफों अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों को भी जायजो दियो गयो। चीफ सैकटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में मरकजी मावनत आली स्कीम ते फ्लैगशिप प्रोग्रामों की मौसर अमल आवरी ने यकीनी बनाने वास्ते इस जिमन में मुकर्र किया गया अहदाफ ना बरवकत हासिल करने की अदाई दी है। श्रीनगर में मुतलिक महकमा का इंतजामी सैकटरियों के नाल एक मीटिंग के दौरान चीफ सैकटरी ने मुतलिक प्रोग्रामों की उन तोड़ी की पेशरफ्त को जायजो लियो। उन्होंने इन प्रोग्रामों की अमल आवरी में एहतसाब ते शफाफियत ना बरकरार रखने को सरकार को अजम को यादों भी की है। अज जम्मू तो कश्मीर में नेशनल मेरिट का मिनिस्टर स्कॉलरशिप के तहत अहल उम्मीदवारों को इम्तिहान लिए गए। इस इम्तिहान में करीब 6600 तालिबे इल्मों ने शिरकत की। इस वास्ते UT बर्मा 97 इम्तिहानी मरकज कायम किया गया था। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जेर निगरानी इस स्कॉलरशिप इम्तिहान में तालिबे इल्म 1068 सीटों वास्ते मुकाबलो कर रहे हैं। इम्तिहान पास करने वाला तालिबे इल्मों ने 9वीं जमात तो अगे 4 साल तोड़ी सालाना 12,000 रुपये को स्कॉलरशिप दी जाएगा। मुल्क ना मनशियात का इस्तेमाल گی وبا تو پاک کران واسطے نشہ مکت ابھیان کے تحت مختلف سطح پر سرگرمی انجام دیتی جا رہی. اس سلسلہ میں کئی لوگ انفرادی سطح پر بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر گئے اس سمت میں اپنی کوشش بروئے کار آنی.

0: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤਾਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਨੇ ਦਿਵਿਆਨਗਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਓ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਕਰਤਾ ਮਾ ਜਨੂਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾ ਅਨੰਤਨਾਗ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਾਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤਸੱਦਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤਨਾਗ ਪਹੁੰਚਣ ਪਰ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਗੋ ਵਾਲਹਾਨਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਓ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਮਾ ਵਿਨੇ ਨੇ ਕਿਓ।
1: मैं चाहता हूं कि भारत जो है नशा मुक्त हो, क्योंकि नशे के कारण जो है हर कोई बर्बाद है, किसी का घर परिवार सब चीज बर्बाद हो जाता है। कोई इंसान बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा जिंदगी में, जब तक नशा को पकड़ोगे तब तक ये आपका खुलेगा कैसे, ये सही चीज पे दौड़ेगा कैसे। यदि मैं नशा करता तो आज मैं भारत के चार धाम, उत्तराखंड के चार धाम, 12 ज्योतिर्लिंग में से 11 ज्योतिर्लिंग, 18,000 किलोमीटर में साइकिल चला चुका हूँ, 17 स्टेट में जो है साइकिल से घूम चुका हूँ, जो कि असंभव है। संभव कैसे हुआ? क्योंकि मैंने किसी प्रकार का नशा नहीं किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नशे में मत पड़ो, नशे में ना पड़ोगे तो आप जिंदगी में सफल हो पाओगे।
0: इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्तीपुरा ने नौ मुख्तलिफ मजामीन में एक साला पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मुतारफ किया है। ये प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का रहनमा खतूत के ऐन मुताबिक तरतीब दिया गया है। यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने NEP का इरतका अमल की तारीफ करता हुआ इन प्रोग्रामा ना मुतारफ कराने वास्ते यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुबारकबाद भी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूज़र ने फीचर का इस्तेमाल का बारह माह अपना जवाब सरकार ने इरसाल किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स ते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वजारत का जराए ने खबर दी है कि यह जवाब वजारत ना कल रात मीटा की तरफों मौसूल हो। यह गल काबिल जिक्र है कि सरकार ने इस महीना की पहली तारीख ना यूज़र ने फीचर का बारह माह व्हाट्सएप तो वजाहत तलब की थी। मरकजी सरकार ने नशीली अशिया का 1945 का जाब्ता ने तरमीम किया है, जिसको मकसद ज्यादा मकदार आला अल्कोहल पर मुश्तमल नशीली अदवियात का जाब्ता ना मजीद मुस्तकम बनाना है। सेहत खानदानी बहबूद की वजारत ने एथाइल अल्कोहल पर मुश्तमल अदवियात वास्ते लाइसेंस की जरूरत ना मां मौजूदा इस्तिस्ना ना खत्म कियो है। पुलवामा जिला ना ताल्लुक रखने वाला एक मारूफ सूफी शायर मीर अब्दुल अजीज कादरी का इंतकाल पर कई अदबी समाजी ते सकाफती अदारों के अलावा दूजा कई शख्सियात ने राय गम को इजहार किया है। मीर अब्दुल अजीज कल शाम शहूरा पुलवामा में इंतकाल कर गया। आखिर पर खास खबर एक बार फिर सुन लियो। वज़ीर आज़म त्रै मुल्कों का दौरा का आखिरी पड़ाव पर पहुंचा न्यूजीलैंड, अपना हम मनसब के नाल करेंगा कई मामलों पर तबादलो ख्याल। जम्मू कश्मीर ने दहशत पसंदी तो पाक कियो गयो वज़ीर दाखिला, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बालताल को दौरों, यात्रियों ने दस्तियाब सहूलियात को लियो है जायजो, हिदमत सेंटर एसोसिएशन को वफद वज़ीर आला के नाल मुलाकी। इसके नाल ही खबरों को यू बुलेटिन मुक्यो। आकाशवाणी तो 6:05 पर कश्मीरी जबान में अगलो बुलेटिन सुनो ना भूलियो। अमना दियो इजाजत, खुदा हाफिज़।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

0: बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली का कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बलोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की गति बनाए रखने का आह्वान किया था। इसके बाद बलोद जिला जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही
1: दिस इज आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 8.8 मीटर तो एफ एम 71.5 मेगा हर्ट्ज पे शबजत 5 मिनट सब प्रोग्राम पेश खदमत गमी बाइन हिंद खतरे

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सब 6 करोड़ लोग 5 लक्षण ताम मुफ्त इलाज हकदार वनिकताम छु 2 करोड़ इलाज सपुद यम से गरीब गरन इलाज पे सपदन वाली खर्च किन 2 लक्षण करोड़ हंस बचत सपुद अस करियो आयुष्मान ऐप डाउनलोड तो बनायो आयुष्मान कार्ड जानकारी बापत करियो 8455555 फोन नंबर पे रबत कई
1: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले की इतला देते हैं। ख्वाहिशमंद तुलबा जो CUET UG 2026 में शामिल हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने तालीमी साल 2026-27 से 4 साल इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। दाखिले और मजीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर राबिता कायम करें।
2: اد کیا بشیر صاحب
3: حضرت
2: تو وکیس بہم وس تامت یقن ون سپدی گمی ماجن بین خطر پروگرام پیش پوش

0: गर्मी बॉयज पण प्रोग्राम बोजन आम्ही प्रोग्रामिक प्रोड्युसर श्री वसीम फारूक हिच्या आकाशवाणी श्रीनगर सैनिस दोन सालानस रेडिओ
1: आकाशवाणी श्रीनगर अपनी घड़िया मिलाइए शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे
2: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट अपनी तामीरात दिल से बनाइए
3: शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे आज के खास मौसुआत थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 20 जुलाई को नई दिल्ली में मुनक्कद होने वाले एहतजाज में जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर समेत तमाम मुतल्लिकीन को दी दावत नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए स्टेटहुड का ड्रामा कर रही है अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस एलजी मनोज सिन्हा ने बालतल जाकर यात्रियों के लिए इंतजाम का लिया जायजा उधमपुर हादसे में 6 अमरनाथ यात्री जख्मी और मैराथन 2026 के सिलसिले में आज SKICC श्रीनगर में मुनक्कद हुई एक तकरीब और भी मौजूद थे एक वक्फे के बाद
4: मोहब्बत वही जो दिल से हो बात वही जो दिल से कही जाए दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है खैबर सीमेंट दिल से बनाओ
5: आज आई मेरी मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी की कमी द्रामज
6: तो क्या शकना फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान
5: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो
6: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदार में त्रावने विटामिन ए सानी इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान दूध तो तेल छो बराबर मकदार में
5: मगर यह है सठा द्रोग
6: हाँ ना ना सुई कीमत मज मुश्क सुई बेहतर पोषण दिवान
7: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایف نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن جانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ
8: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے این کے
9: जय बाबा बरसानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है बाबा बरसानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है
10: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहां प्रभावी नहीं होते इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर्स से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन

0: अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
1: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
0: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमय बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.1 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा आकाशवाणी कुप्पड़ और भदरवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामिन, जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मामला एक बार फिर गर्मा चुका है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस मामले में तमाम सियासी जमातों, अंजुमनों और सिविल सोसाइटी से शमूलियत की दावत दी जा चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 20 जुलाई को नई दिल्ली में मुनक्कद होने वाले एहतजाज में जहां मुल्क के बेशतर सियासी जमातों को दावत दी है, वहीं जम्मू कश्मीर की तमाम जमातों को इस एहतजाज में शामिल होने की दरखास्त की गई है ताकि मरकज पर दबाव बनाया जा सके। इत्तला के मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जम्मू कश्मीर BJP के सदर सत्य शर्मा को भी एहतजाज के लिए मदऊ किया गया है। इस दौरान जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने आज पार्टी लीडरान की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपोजिशन लीडर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 20 जुलाई को स्टेटहुड की बहाली के मुतालबे को लेकर नई दिल्ली में किए जाने वाले एहतजाज को रद्द करते हुए कहा कि BJP जम्मू कश्मीर में आउटसोर्सिंग यानी ठेका मुलाजमत को पहले ही रद्द कर चुकी है और वो इससे पढ़े लिखे नौजवानों के साथ एक ज्यादती तस्वर कर रहे हैं और 20 तारीख को BJP की तरफ से श्रीनगर में सेक्रेटेरियट घेराव किया जाएगा। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को एक राशि सरकार करार देते हुए कहा कि हुकूमत के सारे वुजरा रिश्वत स्तानी में मुलवस हैं। उन्होंने नई दिल्ली में 20 तारीख को किए जाने वाले एहतजाज को एक ड्रामा करार देते हुए कहा कि हुकूमत अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के ड्रामे कर रही है।
3: जम्मू कश्मीर में जॉब्स को आउटसोर्स किया जा रहा है और असेंबली में जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने मेरे एक बयान के बाद इस बात को कबूल किया कि सरकार आउटसोर्स जॉब्स दे रही है और इस बात को भी कबूल किया कि अभी तक 25,000 नौजवानों को आउटसोर्स के जरिए जॉब दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस आउटसोर्सिंग के इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को खंडन करती है, कंडम करती है। भारतीय जनता पार्टी इसको सरासर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ नाइंसाफी मानती है, अन्याय मानती है, इनजस्टिस मानती है। आप देखिए, जब से ये सरकार बनी है जिसे हम पॉपुलर गवर्नमेंट कहते हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट बनने के बाद आप पौने 2 साल का अरसा देखिए मेरे साथियों, करप्शन उरूज पे है। चारों तरफ से इस वक्त भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इनके मिनिस्टर्स भ्रष्टाचार में लिप्त है। ट्रांसफर इंडस्ट्री खोल के रखी हुई है सिर्फ किसने, पैसे ऐंठने के लिए। और ये करप्शन सिर्फ मिनिस्टर नहीं, ये इस परिवार के खजाने में चला जा रहा। मैं आपको उत्सुक के साथ आज कहता हूं, इनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है। जम्मू कश्मीर में सरकार इसलिए चलाओ कि भ्रष्टाचार करना है, करप्शन करनी है, ट्रांसफर इसलिए करना है कि करप्शन करनी है, और करप्शन के जरिए जो पैसा जमा होगा उसके हिस्से अलग अलग करो। एक हिस्सा मिनिस्टर रखेगा, एक हिस्सा अफसर रखेगा और एक हिस्सा इस परिवार के, इस खानदान के खजाने में जमा होगा। ये मैं वसूख के साथ कहता हूँ, बड़ी रिस्पांसिबिलिटी के साथ कहता हूँ। करप्ट मिनिस्टर्स हैं, सबूत हैं इस वक्त एजेंसीज के पास। हम गुजारिश करना चाहेंगे जितनी भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो सामने आए और इनको बेनकाब करें, इनको नंगा करें। बदकिस्मती ये है, जिस सरकार को जवाबदेही यहाँ पे देनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर के इस प्लेटफॉर्म पे, जवाबदेही इस बात की देनी चाहिए थी कि 2.5 साल गुजर गए, आपके 10 किलो अनाज किसी को नहीं मिला, 2.5 साल गुजर गए, आपकी 200 यूनिट की बिजली किसी को नहीं मिली। और आज ये तीसरी पीढ़ी जिस प्रकार का ड्रामा कर रही है कि इस जवाबदेही से भागकर वो दिल्ली में जंतर मंतर पे एक ड्रामा करने जा रही है, एक आईवाश करने जा रही है। क्या बात करते हैं आप, स्टेटहुड, जिस स्टेटहुड की आप बात करते हैं, जिस स्टेटहुड के नाम पे आप करप्शन कर रहे हैं, जिस स्टेटहुड को आगे आप पेंट करके दीवार को रखते हैं और उसके पीछे सिर्फ सरकार इसलिए चला रहे हैं कि आप लूटें जम्मू कश्मीर को, आप नौजवानों के नाम पे, आप आउटसोर्सिंग के नाम पे आपने कारकुनों को नौकरी दें, आप आउटसोर्सिंग के नाम पे आपने कारकुनों के रिश्तेदारों को नौकरी दें, कोई मेरिट में रखें, और फिर उसके बाद वजीर आला साहब ये कहें कि नहीं आउटसोर्सिंग बैकडोर नहीं होता। क्यों नहीं होता है भाई, कैसे नहीं होता है? पहले आप आउटसोर्सिंग के नाम पे उनको अपॉइंट करो और उसके बाद रेगुलराइजेशन के लिए मुहिम चलाओ और रेगुलर करो। जब इस जवाबदेही के लिए आपको लोग सवाल पूछते हैं आप बोलो जंतर मंतर पे हमें स्टेटहुड लाना है। बड़ी बदकिस्मती, बहुत बदकिस्मती।

0: मती है। इसलिए मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने आज ये स्ट्रेटजिक मीटिंग इसलिए की, हम एक मास मूवमेंट खड़ी करना चाहते हैं नौजवानों के बीच, और ये मूवमेंट होगी आउटसोर्सिंग के खिलाफ, नौजवानों के सपनों के जिस तरीके से इस सरकार ने रोंदा है उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं हम, और उस मूवमेंट का आगाज सेक्रेट घेराव से हम करेंगे। बहुत जल्दी आने वाले दिनों में हम यहाँ पे एक एजिटेशन शुरू करेंगे, और ये एजिटेशन सिर्फ कश्मीर में जिसका आगाज होगा, ये यहीं पे नहीं खत्म होगी, ये मूवमेंट मोहल्ले मोहल्ले तक, गली गली तक जाएगी, नौजवानों के बीच में जाएगी। सिर्फ इंसाफ की लड़ाई होगी, नौजवानों के इंसाफ की लड़ाई होगी, नौजवानों के हक की लड़ाई होगी। इस हक की लड़ाई और इस इंसाफ की लड़ाई का आगाज कुछ दिनों में हम कश्मीर के सेक्रेटरिएट से शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए इस बात को यहाँ पे जोड़ रहा हूँ क्योंकि तुरंत आजकल यहाँ पे एक नया शगुफा, एक नया ड्रामा इस मौजूदा सरकार ने, इस पार्टी ने खड़ा किया है, इसको लेटर लिखें, उसको लेटर लिखें, हमने जाना है दिल्ली, हमने वहां से स्टेटहुड लाना है। अरे स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी।
1: बीजेपी श्रीनगर में सेक्रेटेरिएट का घेराव करके हुकूमत की कमजोरियों को उजागर करेगी अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने सुनील शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए कहा कि रियासत के दर्जे की बहाली का वादा मरकज की तरफ से किया गया है और अब इसे पूरा करने में ताखीर हो रही है। यही वजह है कि हम सबको मिलकर दिल्ली जाने की जरूरत है ताकि पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने के साथ ही मरकज को उसका वादा याद दिलाया जा सके। सुनील शर्मा के इल्जाम के जवाब में तनवीर सादिक ने कहा कि उन्हें याद दिलाना चाहेंगे कि पीडीपी बीजेपी कोलिशन सरकार के दौरान 2017 में आउटसोर्सिंग शुरू की गई थी और वो इसमें खुद शामिल थे। अलबत्ता अगर उन्हें शक है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने रिश्तेदारों को काम पर लगाया है तो वो दिल्ली में कायम उन एजेंसियों से रास्ता करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं जिन्होंने जम पोर्टल के जरिए वक्ती मुद्दत के लिए अफरादी कुव्वत फराहम की है।
2: देखिए, पहले दो चीजें बहुत अहम है जो हम सबको समझनी चाहिए कि स्टेटहुड की जो बात है वो हम पिछले डेढ़ साल, क्योंकि जुलाई का जो महीना है अब बराबर डेढ़ साल हो गया, और डेढ़ साल में किसी भी जगह, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हो या पार्टी हो या फारूक अब्दुल्ला साहब, हर किसी प्लेटफॉर्म पे स्टेटहुड की बात, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हो या होम मिनिस्टर के साथ, वो बात उठी। लेकिन हम समझते हैं कि जो अप्रोप्रिएट टाइम बार बार वो बात कर रहे थे, चीज को याद दिलाने के लिए कि जो अप्रोप्रिएट टाइम है वो अब आ चुका है, और इसीलिए वो फैसला हुआ था कि हम अब दिल्ली में जंतर मंतर पे सब मिलेंगे। जब रिस्पांस चारों तरफ से अच्छा है, क्योंकि हम ये अभी भी वही कहते हैं और वही समझते हैं कि ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है। चलिए पहल हमने की, लेकिन ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, वो हर एक कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की बात है जो समझता है कि उसका हक छीना गया है या उसके साथ सौतेली माँ का व्यवहार हुआ है, और वही चीज हम लोगों ने किया। इसीलिए डॉक्टर साहब की तरफ से, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से चिट्ठियां गई हैं अक्रॉस पूरे इस मुल्क में, जितने भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको, उनके सदरों को, और जो कांग्रेस, जो इंडिया ब्लॉक है उनको, जो नॉन अलाइड है उनको, और जम्मू कश्मीर के हर एक पॉलिटिकल पार्टी है वो, चाहे उसमें बीजेपी भी हो, क्योंकि हम समझते हैं कि बीजेपी को भी स्टेटहुड चाहिए, या तो वो समझ जाए या तो हमें बताएं कि उनको स्टेटहुड की जरूरत नहीं है। बाकी मुझे लगता है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मैं बार बार ये कहता हूं और ये आज भी कहूंगा कि ये हर एक इंसान की जंग है और मुझे लगता है हर किसी को इसमें सपोर्ट करना चाहिए।
3: बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लीडर ऑफ अपोजिशन की श्रीनगर में, उन्होंने एक तो स्टेटहुड को लेकर जो कहा कि एनसी का ड्रामा है, ये अपनी कमजोरियां, अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल, ये जो इन्होंने आउटसोर्सिंग की है 25,000 लोगों को लगाया उसको छुपाने के लिए, और वो इसी तारीख को श्रीनगर में सिविल सेक्रेटेरिएट का घेराव कर रही है, इस पर आपका क्या रद्दअमल है?
2: मैं इसमें भी दो चीजों से जवाब दूंगा। एक तो मेरा दिल भी आज ये नहीं चाहता था कि मैं आज भी सियासत खेलूं, आज भी मैं सियासत के लिए हमेशा हर दिन मिलेगा, लेकिन दो चीजें अहम हैं। क्या बीजेपी को स्टेटहुड की जरूरत नहीं है? क्या उन लोगों ने अपने मंशूर में और लोगों को नहीं बोला था कि स्टेटहुड की जरूरत है? अगर है तो मुझे लगता है आज जो हमारी जो छोटी सी सियासत है उसको साइड पे रख के एक जामिया प्रोग्राम में दिल्ली वालों के पास जाए, दिल्ली वालों को कहे कि हम अलग अलग पार्टी से आते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी से आते हैं, लेकिन आज की डेट में हम एक साथ हैं। वो काश हमारे जो एलओपी साहब हैं वो समझ जाते तो शायद बहुत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बार हम अच्छा कुछ कर पाते। लेकिन जहां तक उनकी बात है जो वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते, क्योंकि बहुत अहम है उस बात का जवाब देना, दो ही चीज है। अगर वो आउटसोर्सिंग के खिलाफ है तो उनको मैं याद दिलाऊं कि जब वो मंत्री थे बीजेपी और पीडीपी हुकूमत में, तो उन्हीं के वक्त ये आउटसोर्सिंग का काम हुआ था 2015 से 2018 के बीच में।

0: 2017 मेनली जब ये आउटसोर्सिंग का शुरुआत हुई थी जम्मू कश्मीर में, जिसमें हम हमेशा अगेंस्ट थे। अब ये अगर इनका दूसरा ये प्रॉब्लम है कि इसमें जी कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने रिश्तेदारों का तो उनका नाम आगे लाएं, और सबसे बड़ी बात कि जो जेम पोर्टल है वो मरकज का है, आराम से एलओपी साहब दिल्ली में एक चिट्ठी लिख सकते हैं कि इसमें जी दांधलियां हो गई, जेम पोर्टल से एक एक नाम एक एक लिस्ट, क्योंकि वैसे भी आउटसोर्सिंग में इनके अपने लोग बाहर के हैं वो इसको आउटसोर्स कर रहे हैं, तो हमारा उसमें हार्डली कोई काम है। हमारा सिर्फ ये है कि किसी डिपार्टमेंट में कुछ टेम्पररी बेस पे कुछ लोगों को लगाना है तो हमें इतनों की जरूरत है, बस उतना ही जे एंड के गवर्नमेंट का हाथ है, जबकि जो बाकी एसएसआरबी और पीएससी जो परमानेंट जॉब्स है उसको इसके साथ कोई लेन देन नहीं है। अब ये जानबूझ के इसको एक सीन क्रिएट कर रहे हैं खुद स्टेटहुड से भागने के लिए, लेकिन या तो इतना मतलब सही अगर ये जानते हैं तो बाहर आके निकलिए और कहें कि हमें स्टेटहुड जरूरत है, हम समझ जाएंगे कि ये जो सब कुछ है, ये जो ड्रामा है, इसका मकसद क्या है।
1: सुनील शर्मा के इल्जाम बेबुनियाद, बात कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक। अब एक और मौजूद समय, जम्मू कश्मीर के लखनऊ गवर्नर और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा ने आज बालतल बेस कैंप का दौरा करके वहां पर श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा आला अफसरान भी थे। लखनऊ गवर्नर ने यात्रियों के लिए फराहम की गई सहूलियात, रिहाइश, रजिस्ट्रेशन, नकलो हरकत और दीगर इंतजाम का मुआयना किया और तमाम महकमों को हिदायत दी कि यात्रा के हर मरहले को मुकम्मल तौर पर मुनजम, महफूज और बिला रुकावट बनाया जाए। उनका कहना था कि श्राइन बोर्ड और तमाम मुतल्लिका महकमे इस बात के लिए यकजा हैं कि हर यात्री को महफूज, खुशगवार और यादगार रूहानी सफर का एहसास दिया जाए।
2: 7 दिनों की यात्रा पूरी हुई है बाबा अमरनाथ की, आज 8वां दिन है। अब तक मोटे तौर पर 1,70,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो इसकी हर कोशिश की है। गत वर्षों की तुलना में बड़ी मात्रा में बिना पंजीकरण के श्रद्धालु आए, उनको भी शांतिपूर्ण ढंग से धैर्यपूर्वक समझा करके यात्रा कराने में हम सबको सफलता मिली है। हर कोशिश की जा रही है कि एक सुखद और अच्छा अनुभव लेकर के श्रद्धालु जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में देश भर के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। यात्रा का जहां धार्मिक महत्व है, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी इस यात्रा के कारण काफी सहयोग मिलता है। जो भी यात्री आते हैं, कई दुकानें भी लगाई गई हैं, स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं, होटल हो, गाड़ियां हो, इन सबको बड़ा साधन और एक बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर की जो टेंट, घोड़े, बाकी संसाधनों के माध्यम से इस यात्रा से जुड़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां की अर्थव्यवस्था को भी काफी गति मिलेगी। मैंने टेंट खुद अपनी आंखों से देखा है, जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं वो भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं, काफी अच्छे इंतजाम टेंट में हैं, सुरक्षा का भी काफी ध्यान दिया गया है, फायर एक्सटिंग्विशर हर टेंट में रखे जाए ये व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि व्यवस्था की दृष्टि से भी एक अच्छी यात्रा मानी जाएगी।
1: एलजी मनोज सिन्हा बालतल में जराय ब्लॉक से बात कर रहे थे। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला उधमपुर के टोलडी नाले के करीब पेश आए सड़क हादसे का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि जख्मी हुए 6 यात्रियों के इलाज में किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। शेयरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से, इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट दिल से बना।
4: जय बाबा बरसानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
5: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
4: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहने। पर्यावरण की पवित्रता बनाए भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें, अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
5: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूरिंग पब्लिक इंटरेस्ट बाय

0: से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी कमी द्रामस।
2: तो क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
1: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
2: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदार त्रावने, विटामिन ए छो सानी इम्यूनिटी बढ़ावान, तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान, दूध तो तेल छो बराबर मकदार।
1: मगर यह है सठा द्रोग?
2: हाँ ना ना सुई कम मत, मज मुश्क ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
3: पनुन तो पन्ने आयाली जिंदगी बनाई सेहत मंद, प्लस एफक निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पानो। बाजरस में दस्तियाब फोर्टिफाइड वसाइलन की जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in पर।
4: इशूड इन पब्लिक इन ट्रस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जेंट।
5: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता है। यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए कृपया कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें।
6: जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड सिम कार्ड यहाँ काम नहीं करते। यात्री बालटाल, लुनवान तथा अन्य बेस कैंप पर उपलब्ध विशेष काउंटर से पहले से एक्टिवेट किए गए सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा मार्ग पर लगाए गए साइन बोर्ड, एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार का शॉर्टकट न अपनाएं और डेंजर जोन से दूर रहें। अगर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो तो तुरंत नजदीकी हेल्थ सेंटर से संपर्क करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही यात्रा करें और समय समय पर आराम जरूर करें। किसी भी सहायता या आपातकालीन स्थिति में नजदीकी पुलिस या सुरक्षा बल से संपर्क करें।
5: आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इन निर्देशों का पालन करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शनों का आनंद लें।
6: इशूड इन पब्लिक इन ट्रस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
7: आदाब, ये छे आकाशवाणी श्रीनगर, तजम्मुल अहमद बोजनावे खबर। गड़ अख नजर खास खास खबरन हंजन सुर्खियन पेट। वजीर अजम नरेंद्र मोदी वह त्रेन मुल्कन हंदे दौर किस आखिरी पड़ावस पेट न्यूजीलैंड, तिम करन तति पन्निस हम मनसबस सहित मुख्तलिफ मामलन पेट ख्याल बावत। जम्मू कश्मीर चु दहशत पसंदी निश पाक करन आमुत दाखिल वजीर अमित शाह। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुंद बाल तलुक दौर, यात्रन दस्तियाब सहूलतन हिजक साम। तो वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन कर कशीर मंज मैराथन की त्रेम शुमार चे ऑफिशियल ब्रांडिंग हिज नकाब कुशाई। पेश खबर तफसील सान। वजीर अजम नरेंद्र मोदी वह त्रेन मुल्कन हिंदे दौर किस आखिरी पड़ावस पर आज न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड। आज दौरस दौरान करन तिम न्यूजीलैंड किस पन्नस हम मनसब क्रिस्टोफर लगजन सहित पानवन तो इलाकई दिलचस्पी हिंदन कहियान मामलन पर ख्याल बावत। यह चोर दहल पत कंस भारतीय वजीर अजम सुंद न्यूजीलैंड गोडनिक दौर। नरेंद्र मोदी करन ऑकलैंडस मज न्यूजीलैंड कन बाशिंदन हंदिस अकिस इजलास अलाव तत रोजान भारतीय शहरियन त खताब। ये कत बाविन लायक ज वजीर अजम नरेंद्र मोदी वत इंडोनेशिया तो आस्ट्रेलियो कामयाब दौर कर पत न्यूजीलैंड। मरकजी दाखिल वजीर अमित शाहन वोनमुत महफूज सरहद खुशहाल सरहदी खत ता खुशहाल माशरे हकन रलित मिलित मुल्कस महफूज बनवित। कौमी राजधानी नई दिल्ली में सरहदी रियासतन तो मरकजी इंतजाम वाले इलाकन हंदन एस एस पी एन सहित मुनद अकिस मीटिंग के खिताब करान वो अमित शाहन जम्मू कश्मीर तो शुमाल मशरकी खत च दहशतगर्दी निश पाक कर आमित तो ये अक इजतमाही कामयाबी हज अलामत। सालान श्री अमरनाथ जी यात्रा छे बड़ जोश खरोसान जारी तो आज तोर बालतल तो पहलगाम वतो सास बदव यात्रियों गुफाई मज हाजरी दि ते शिवलिंग मुख दर्शन। शाम पांच बज ताम सतोह सास नौ शत अखठो यात्रियों गुफाई मज हाजरी दिजमुच। यपर वो आज सुबह जमे की भगवती नगर बेस कैंप पेट वादी कुन रवान सपुदमुत आठ सास आठ शत यात्रियों पे मुश्तमिल ब्याखा कैफल वादी यम यात्री गसन पगा सुबह दर्शन बापत गुफाई कुन रवाना। अ दौरान गई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बालतल यद दौरान तमो तथि यात्रियों दस्तियाब थावन यवान सहूलतन साम हेच। आकाशवाणी श्रीनगर गांधरबल नुमाइंद साबिर अयूबन चे खबर दिसम ज एल जी एन बो गोडनिक सतन दोहन यात्रा जबर पट मुनद सपदनस पे इतमान। मीडिया नुमाइंदन सत कत करान वो तमो

0: जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो, इसकी हर कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में देश भर के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छे अनुभव लेकर के जाएंगे। यात्रा का जहां धार्मिक महत्व है, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी इस यात्रा के कारण काफी सहयोग मिलता है। जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं वो भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं, काफी अच्छे इंतजाम टेंट में है, सुरक्षा का भी काफी ध्यान दिया गया, फायर एक्सटिंग्विशर हर टेंट में रखे जाए व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था की दृष्टि से भी एक अच्छी यात्रा मानी जाएगी।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू सूबे के उधमपुर जिले में श्रीनगर जम्मू कौमी वथि पे टोलडी नालस नख अकिस गाड़ि हादसे पेश ये कि वाको सख्त नोटिस नमुत अत हादसे मज गई श्री अमरनाथ जी यात्रा पे गन वाल मध्य प्रदेश छह यात्री जख्मी जख्मी यात्री यराज बापत जीएमसी जम्मू मज दाखिल कर आमुत एल जी एन हदायत दुम जख्मी गलाज च जबर सहूलत याफ तवन य श्री अमरनाथ जी यात्रा के दशवें वतन पर सफाई सुथराई यकीनी बनाने बापत महकमे अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर चौर हथ खोत ज्यादा सफाई कर्मचारी तैनात करम आकाशवाणी हिंद कुलगामिक नुमाइंद खुर्शीद पडरून खबर दिजम महकमन यात्रा रूटन पर मुख्तलिफ जायन जहा 570 बैतुल खुला नसब करम आकाशवाणी सत कत करान वो अर्बन लोकल बॉडीज कशीर हिंद डायरेक्टर काजी सरवरन जम सफाई कर्मचारी दोह रात काम करान तमो यात्रा अपील करम तम दिन अत सिलसिल मन अथवास वजीर अला उमर अब्दुल्लान कर आज श्रीनगर कश्मीर मैराथन किस त्रम शुमारस बापत ऑफिशियल ब्रांडिंग हज नकाब कुशाई अत मौक वजीर अला सशीर नासिर असलम वानियस तो जेड बल किस एम एल ए तनवीर सादिकस अलव कई अफसर तौजूद ऑफिशियल ब्रांडिंग हज नकाब कुशाई सू अम मैराथन के रजिस्ट्रेशन बापत पोर्टल खुलमुत तो रजिस्ट्रेशन अमल सपद अनकरीब शुरू तह पाव चेतस मैराथन गुस अक्तूबर रेतस मनद खदमत सेंटर एसोसिएशन के एक वफदन कर आज वजीर अला उमर अब्दुल्ला मुलाकात वफद के अरकान हिस खदमत सेंटर हिस काम कारस तो लूकन आयतन थामने खदमतन हिंदिस बारस मज वजीर अला तफसीली जानकारी जल शक्ति हिंद वजीर जावेद अहमद राना ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर वजीर अला सिंदिस मुशीर नासिर असलम वानियस हमरा अकिस बहलपाय मीटिंग मज आपपोशी तो फ्लड कंट्रोल महकम च कारगुजारी साम वजीरन दुत कशीर मन सलाबस रोट करनस मुतलिक बुनियादी ढांचे मजीद मुस्तकम करने की जरूरत पे जोर तमो दि हसास इलाकन पे खास जोन दिन हदायत मीटिंग मज आई महकम दस अमलान यवान प्रोजेक्टन तमाम हन कानून साज असम्बली हिंद स्पीकर अब्दुलरहीम रथरन तुल आज एम एल ए हॉस्टल श्रीनगर नसब तो तमीर करना आमचन जदीद सहूलतन दस तमीरती ढांचन मज जदीद सहूलतन हज फराहमी हज अहमियत बतलावान वन तमो जम एल ए हॉस्टल कानून साज या अरकान बापत अख बुनियादी सहूलत तथ अंदर नवीन खजमत दस्तियाब तवान चीफ सेक्रेटरी अटल डोलोन यू टी मज मरकजी मावनत वाजन स्कीम फ्लैगशिप प्रोग्राम हज असरदार अमल आवरी यकीनी बनाने बापत अत जमनस मज मुकर करना आम हदफ बर वक्त हासिल कर हदायत दिम श्रीनगर मुख्तलिफ महकमन हंदन इंतजामी सेक्रेटरियन सकस मीटिंग दौरान हज तमो मुख्तलिफ प्रोग्राम मज वाम प्रावन आमतिस पेशरफ साम तमो दुम प्रोग्राम हज अमलावरी मज एहतसाब तो शफाफियत बरकरार थावन के सरकार किस अजमस फ्यूर मुल्क नशेखोरी हंद वबा निश पाक करना बापत नशा मुक्त अभियान तहत मुख्तलिफ सोथरन पे सरगर्मी अंजाम दिन अत सिलसिल मह लूक इनफरेदी सोथरस पे पन असर रसूख इस्तेमाल कर सिमत मज पोशिश कर अमी कस्म अकिस कोशिश तहत कोर छत्तीसगढ़ रोजन वाल विनय दिवंगन नाविक एक नौजवान यूस अवलि मई साइकिल्स पे पन सफर शुरू तो नशा मुक्त अभियान मुतलिक जानकारी आम करान वोत सू जनूबी कशीर हिंदिस अनंत नागस मज सन नुमाइंदन खबर दिसम अनंत नाग वातनस पे कर मकामी लोको तम लोल बर्ज खुशावे जम्मू कश्मीर मज आवाज नेशनल मेरिट का मेन स्कॉलरशिप स्कीम तहत अहल उम्मीदवार इम्तहान हन अत इम्तहान मज करीब शे सास शह तलब इलमों शिरकत अमे बापत द्रुस यूटी मज सतनमत इम्तहानी मरकज कायम कर आमत इम्तहान पास करन वालन तलब इलमन यी नयमी जमाज पे इन वालन चौरन वरियन बापत सालाना बह सास रुपयन हज फी कत स्कॉलरशिप दिन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वूदपोर नौन मुख्तलिफ मजमूनों मज अकी वरी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स मुतारिब करम प्रोग्राम कौमी तलीमी पॉलिसी जसास वो कन रहनुमा खतूतन मुताबिक तरतीब दिन आमित नेशनल कॉन्फ्रेंस मरहुमा बेगम अकबर जानस तहजी शतवहमी बरसी पे खराज

0: यात्रा के पुरअमन महफूज और आसन इनेकाद के लिए जाम इंतजामात किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिहाइश, सफाई, तबी सहूलियात और दीगर बुनियादी इंतजामात का मुआयना करते हुए कहा कि बालतर और चंदनवाड़ी में कायम 100-100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल यात्रियों को मयारी तिबी खिदमात फराहम कर रहे हैं। एलजी ने मीडिया से बात करते हुए यात्रा के हवाले से कहा,
1: जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो, इसकी हर कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में देश भर के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छे अनुभव लेकर के जाएंगे। यात्रा का जहां धार्मिक महत्व है, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी इस यात्रा के कारण काफी सहयोग मिलता है। जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं वो भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं, काफी अच्छे इंतजाम टेंट में है, सुरक्षा का भी काफी ध्यान दिया गया, फायर एक्सटिंग्विशर हर टेंट में रखे जाए, व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था की दृष्टि से भी एक अच्छी यात्रा मानी जाएगी।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू सूबे के उधमपुर जिले में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर टोल्डी नाला के करीब एक गाड़ी को हादसा पेश आने के वाकये का सख्त नोटिस लिया है। इस हादसे में श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जा रहे मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 6 श्रद्धालु जख्मी हो गए। जख्मी यात्रियों को इलाज और मुआवजे के लिए जीएमसी जम्मू में दाखिल किया गया है। एलजी ने जख्मियों को बेहतर से बेहतर तबी सहूलियात दस्तियाब रखने की हिदायत दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दोनों रास्तों पर सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर ने 400 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को तैनात किया है। कुलगाम के हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने खबर दी है कि महकमे ने यात्रा रूट्स के मुख्तलिफ मकामात पर 275 बैतुल खुला नस्ब किए हैं। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर के डायरेक्टर काजी सरवर ने कहा कि सफाई कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वो इस सिलसिले में अपना ताउन दें।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए हम हर वक्त सफाई का एहतमाम करते आ रहे हैं और इस साल भी हमने खुसूसन जो हमारे ट्रांजिट कैंप आ रहे हैं उसमें काजीगुंड है या वॉलनट फैक्ट्री है, मटन है या उसके अलावा नुनमन बेस कैंप है, उसमें हमने एडिशनल लगभग हमारे पास 400 सफाई मित्राज हैं जो इसके लिए हमने तैनात किए हैं। इसके अलावा हमारे पास 300 बाथरूम्स और टॉयलेट्स बना के रखे हैं। इसके अलावा रिक्वेस्ट करते हैं कि पॉलिथीन बैग यूज न करें और हमने जो इनको बहुत सारी जगह हमने रिप्लेसमेंट के लिए जूट बैग्स भी इनको दिए हैं। ये पॉलिथीन ऑलरेडी उसको बैन किए हैं अपने यूएलबीज में।
0: वज़ीर-ए-आला ने आज श्रीनगर में कश्मीर मैराथन के तीसरे शुमारे के लिए ऑफिशियल ब्रांडिंग की नकाब कुशाई की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला के मुशीर नासिर असलम वानी और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक के अलावा कई आला अफसरान भी मौजूद थे। ऑफिशियल ब्रांडिंग की नकाब कुशाई के साथ ही मस्कूरा मैराथन का रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल गया है और रजिस्ट्रेशन का अमल अनकरीब शुरू होगा। वाज़ह रहे कि यह मैराथन इस बरस अक्टूबर के महीने में मुनक्कद होगा। खिदमत सेंटर एसोसिएशन के एक वफद ने आज वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। वफद के अरकान ने खिदमत मराकज के कामकाज और लोगों को इन मराकज के जरिए फराहम की जा रही खिदमात के बारे में तफसीली जानकारी दी। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में वज़ीर-ए-आला के मुशीर नासिर असलम वानी के हमरा एक आला सतह की मीटिंग में आपाशी और फ्लड कंट्रोल महकमे की कारगुजारी का जायजा लिया। वजीर ने कश्मीर खित्ते में इंसदाद सैलाब के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने हसास इलाकों पर खसूसी तवज्जो मरकूज करने की हिदायत दी। मीटिंग में महकमे की जानिब से अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया गया। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने आज एमएलए होस्टल श्रीनगर में नस्म और तामीर की गई जदीद सहूलियात का इफ्तिताह किया। उन्होंने तामीराती ढांचों में जदीद सहूलियात की फराहमी की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि एमएलए होस्टल अरकान कानून साजिया के लिए एक बुनियादी सहूलत है और इसमें जदीद खिदमात दस्तियाब रखी जा रही हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लों ने जम्मू कश्मीर में मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों और फ्लैगशिप प्रोग्रामों की मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए इस जमन में मुकर्रर किए गए अहदाफ को बरवक्त हासिल करने की हिदायत दी है। श्रीनगर में मुख्तलिफ महकमों के इंतजामी सेक्रेटरियों के साथ एक मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों की अब तक

0: की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने इन प्रोग्रामों की अमल आवरी में एहतसाब और शफाफियत को बरकरार रखने का सरकार के अजम का इयादा किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव कुमार ने आज अदालत आलिया की जम्मू शाख में नए कायम किए गए वकला के क्लर्क रूम का इफ्तिताह किया। अदालत में दस्तियाब रखी गई इस सहूलत का मकसद अदलिया के निजाम को मजीद मजबूत बनाना है। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस ने डिजिटल लिटरेसी को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। इफ्तिताही रस्म के मौके पर जस्टिस सिंधु शर्मा, जस्टिस रजनीश ओसवाल, जस्टिस मोहम्मद अकरम चौधरी, जस्टिस वसीम सादिक, जस्टिस रशीद सेखरी और जस्टिस संजय परिहार के अलावा अदलिया से जुड़ी दीगर कई शख्सियात भी मौजूद थीं। मुल्क को मनशियात के इस्तेमाल की वबा से पाक कराने के लिए नशा मुक्त अभियान के तहत मुख्तलिफ सतहों पर सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। इस सिलसिले में कई लोग इनफरादी सतह पर भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके इस सम्त में अपनी कोशिशें बरोए कार लाते हैं। इसी तरह की एक कोशिश में छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले विनय देवांगन ने इस बरस 1 मई को साइकिल पर अपना सफर शुरू किया और नशा मुक्त अभियान से मुतलिक जानकारी आम करते हुए जनूबी कश्मीर में अनंतनाग पहुंच गया है। हमारे नुमाइंदे तसदुक रशीद ने खबर दी है कि अनंतनाग पहुंचने पर मकामी लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। आकाशवाणी श्रीनगर के साथ बात करते हुए विनय ने कहा,
1: मैं चाहता हूं कि भारत जो है नशा मुक्त हो, क्योंकि नशे के कारण जो है हर कोई बर्बाद है। किसी का घर परिवार सब चीज बर्बाद हो जाता है। कोई इंसान बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा जिंदगी में, जब तक नशा को पकड़ोगे तब तक ये आपका खुलेगा कैसे, ये सही चीज पे दौड़ेगा कैसे। यदि मैं नशा करता तो आज मैं भारत के 4 धाम, उत्तराखंड के 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग में से 11 ज्योतिर्लिंग, 18,000 किलोमीटर में साइकिल चला चुका हूँ, 17 स्टेट में जो है साइकिल से घूम चुका हूँ। संभव कैसे हुआ, क्योंकि मैंने किसी प्रकार का नशा नहीं किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नशे में मत पड़ो, नशे में ना पड़ोगे तो आप जिंदगी में सफल हो पाओगे।
0: टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी श्रीनगर की साल 2026 की मीटिंग आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर में मुनक्द हुई। मीटिंग की सदारत जम्मू कश्मीर सर्कल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सागर हनुमान सिंह ने की। मीटिंग के दौरान कश्मीर खत्ते में सरकारी जबान की अमल आवरी का जायजा लिया गया। जम्मू सूबे के मुख्तलिफ कॉलेजों से ताल्लुक रखने वाले 240 तालिब इल्मों ने जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में समर इंटर्नशिप मुकम्मल की है। इस प्रोग्राम के दौरान शुरका को कारखानादारी, स्टार्टअप प्रमोशन, इख्तराइयत, तजारती मनसूबाबंदी और दीगर कई उमूर के बारे में तरबियत दी गई। EDI के हुकाम ने कहा है कि ऐसे प्रोग्राम आइंदा भी जारी रहेंगे। आज जम्मू कश्मीर में नेशनल मेरिट का मींस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अहल उम्मीदवारों का इम्तिहान लिया गया। इस इम्तिहान में करीब 6,600 तालिब इल्मों ने शिरकत की। इसके लिए UT बर में 97 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए थे। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जेर निगरानी इस स्कॉलरशिप इम्तिहान में तालिब इल्म 1,068 निशस्तों के लिए मुकाबला कर रहे हैं। इम्तिहान पास करने वाले तालिब इल्मों को 9वीं जमात से आगे अगले 4 बरस तक सालाना 12,000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा ने 9 मुख्तलिफ मजामीन में 1 साला पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मुतारिफ किए हैं। ये प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रहनमा खतूत के ऐन मुताबिक तरतीब दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू ने NEP के इरतकाई अमल की तारीफ करते हुए इन प्रोग्रामों को मुतारिफ करने के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरहूमा बेगम अकबर जहां को उनके 26वें यौम विसाल पर खराज अकीदत पेश किया है। पार्टी के एक प्रेस बयान में कहा गया है कि मरहूमा ने अपनी पूरी जिंदगी जम्मू कश्मीर के लोगों खुसूसन ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने में सरफ की। इस दौरान पार्टी के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मारूफ मौलिज डॉक्टर खुर्शीद असलम खान की वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। दरियसना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज आसार शरीफ दरगाह हजरतबल पर हाजिरी दी और नमाज जुमा के मौके पर जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए दुआ की।

0: बीजेपी जम्मू कश्मीर के ऑल सेल्स इंचार्ज वेद शर्मा की सरबराही में आज जम्मू में एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग से खिताब करते हुए पार्टी के प्रदेश सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने तंजीमी सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार किया। इस दौरान पार्टी के शेड्यूल कास्ट मोर्चा के अहतमाम से भी जम्मू में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें सत शर्मा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने आज कपवाड़ा में पार्टी की वर्किंग कमेटी के अरकान की एक मीटिंग में तंजीमी उमूर का जायजा लिया। अशोक कौल ने बीजेपी के फलाई प्रोग्रामों के बारे में आम लोगों में बेदारी पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। मीटिंग में पार्टी के कई लीडरों ने शिरकत की। बुलंदपाया वली हजरत कमरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक आज मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाका शेरगढ़ी जहांगीर चौक श्रीनगर में खत्मातुल मुअज्जमात और दुरूद व अज़कार की महफिल आरास्ता हुई, जिसमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:28 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:45 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। कोई भी मुल्क कितना ही मजबूत और कितना ही ताकतवर हो, लेकिन हर मुल्क के लिए बैरूनी ताकतों से खबरदार रहने के साथ साथ अंदरूनी सलामती के हवाले से हमेशा चौकस रहने की अशद जरूरत होती है, ताकि मुल्क की सालमियत को कोई नुकसान न पहुंच सके। इस बात में जरा बराबर भी शुबा नहीं है कि हमारा मुल्क दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में शुमार होता है और हमने कई मौाकों पर अपनी दिफाई सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा किया, लेकिन बदकिस्मती से ये बात भी सच है कि हमें बैरूनी दुश्मनों के साथ साथ अंदरूनी सतह पर भी चैलेंज का सामना रहा है। जहां हमारे दुश्मन हमेशा नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हैं, वहीं अंदरूनी सतह पर भी हमने ऐसे हालात का मुशाहिदा किया है जब मुल्क के अंदर बैठे मुल्क दुश्मन अनासिर ने दुश्मन का आलायकार बनकर मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाया है। जग्राफियाई लिहाज से हमारा मुल्क एक ऐसे खत्ते में वाकया है जहां हमारी सरहदें कई हमसाया ममालिक से मिलती हैं और इनमें से कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो हमेशा से ही हमारी सालमियत को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहे हैं। अंदरूनी सतह पर भी मामलात काफ़ी हद तक संजीदा हैं और हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि बैरूनी दुश्मनों से हमने कई बार मुकाबला किया है और दुश्मन को हमने नाकों चने चबवाए हैं, लेकिन अंदरूनी सतह पर हमें एक ऐसी सूरत हाल का सामना है जहाँ पर दुश्मन का कोई चेहरा नहीं और ये मालूम करना मुश्किल है कि हमारे दरमियान बैठे गद्दार किस वक्त क्या गुल खिलाएंगे। इसके अलावा हमारे लिए दरअंदाजी का मसला एक बहुत बड़ा मसला है जिसको रोकने के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात चौकस रहते हैं और आए दिन हमें दरअंदाजी को रोकने की कोशिशों की खबरें मिलती हैं। ताहम कई बार दहशतगर्द दरअंदाजी की कोशिशों में कामयाब होकर मुल्क में तखरीबी कार्रवाइयां सर अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। इसके अलावा हमारा मशरिकी सरहद नाजायज तारिकेन वतन के हवाले से दर्द सर बना रहता है। मुल्क की सरहदों की हिफाजत हो या दरअंदाजी की कोशिशों पर नजर रखने की बात हो, इसकी जिम्मेदारी सरहदी हिफाजती फोर्सेज यानी BSF की है। बैरूनी हिफाजत की बात हो या अंदरूनी सलामती का मामला, इस बात से हम सभी बाखबर हैं कि इसकी जिम्मेदारी वजारत दाखिला की है। हमारी उन सरहदों पर जिनको सलामती के हवाले से जबरदस्त ध्यान देने की जरूरत है, मैं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मगरबी बंगाल और शुमाली मशरकी रियासतें वगैरह शामिल हैं और इन रियासतों के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में चौकसी को मजीद सख्त करने और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए गुज़श्ता रोज नई दिल्ली में वजारत दाखिला के अहतमाम से वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में यहाँ तैनात SPs की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिनमें इन रियासतों के 119 अजला के सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस शामिल थे। लैंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट SPs कॉन्फ्रेंस 2026 के नाम से मासूम इस कॉन्फ्रेंस में सरहदी हिफाजती निजाम को मजबूत करने, एजेंसियों के दरमियान

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: वादे की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नष्ट होता है।

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से वादी की आवाज़ पेश किया जा रहा है। समीन, पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में इंसानी बहरान संगीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आटा चोर बाजारी में फरोख्त हो रहा है, सब्जियों की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं और अदवियात कम पड़ने लगे हैं। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में जारी बहरान के दौरान आम शहरियों और मरीजों को मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना है। तजियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में जारी मौजूदा बहरान के दौरान माजी की निस्बत एक बिल्कुल नई हिकमत अमली देखने को मिल रही है। समीन, गुज़श्ते चंद दिनों से वहाँ ऐसी मुतअद्दिद वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिनमें पुलिस एहलकार निजी गाड़ियों की तलाशी लेते और अशाई खुर्दनों से लदे ट्रकों को रोके हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में जारी एहतजाज के बाईस जहाँ मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं, वहीं खुराक और अद्वियात की दस्तियाबी के हवाले से

वादी की आवाज इस वक्त आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। समी चंद रोज कबल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि खित्ते में दाखिले के बाद अहम रास्तों पर आयद पाबंदियों के बायस खुराक अदवियात और दीगर जरूरी आयशा की फराहमी मुतासिर होने की इतलात मौसूल हुई हैं। ऐसी पाबंदियां शहरियों की सेहत नकल हरकत और बुनियादी जरूरियात तक रसाई के हकूक पर मनफी असरात मुरतब कर सकती हैं। तजियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में जारी मौजूदा बहरान के दौरान माजी की निस्बत एक बिल्कुल नई हिकमत अमली देखने को मिल रही है। ज़मीनी हकाइक और अवामी तासुर से ये वाज़ेह है कि हाकमी बाला से इस मरतबा एहतिजाज का जोर तोड़ने के लिए खुराक और आशाई ज़रूरिया की सप्लाई लाइन को हदफ बनाया है। बज़ाहिर ये ख्याल किया जा रहा है कि जब बुनियादी ज़रूरतें मैसर नहीं होंगी तो मज़ाहमत ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकेगी और यूं अवामी एक्शन कमेटी अंदरूनी दबाव के तहत अपनी एहतियाजी तहरीक ख़त्म करने पर मजबूर हो जाएगी। तजनिगार कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च की कॉल ज़रूर दे रखी है लेकिन एंट्री पॉइंट्स को बंद नहीं किया। वहाँ से गाड़ियाँ महदूद तादाद में अब भी गुजर रही हैं। ऐसे में इस तमाम सूरत हाल के दरमियान वहाँ आम शहरी शदीद गैर यकीनी कैफियत का शिकार है। भूख और बीमारी को सियासी हिकमत अमली का हिस्सा बनाना अफसोसनाक है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में 18 जून से सप्लाई लाइन मुतासिर है और वहाँ लोग अब तक किसी न किसी तरह गुजारा कर रहे थे लेकिन आगे क्या करेंगे। समिन ये थी चंद बातें पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर की बहरानी सूरत हाल के हवाले से। अब प्रोग्राम के आखिर पर इस नातिया कलाम से फैज़ याब होते हैं।

0: समीर इसके साथ ही स्टेडियोज की घड़ी इशारा कर रही है कि आज के प्रोग्राम का जो वक्त है अपने अख्तिताम को पहुंचता है। मेज़बान को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, सलामत रहिए, खुदा हाफिज।
1: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नष्ट होता है।

0: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ज़मीन हम आपको याद दिला दें, आज रात 10:30 पर प्रोग्राम नश होगा बिल मुशाफा। इसमें मशहूर मारूफ शायर और अदीब फाजिल कश्मीरी के साथ रिकॉर्ड किया गया इंट्रो नश्र का। इंट्रोर हैं रफीक राज। सुनना ना भूलिएगा रात 10:30 पर। यह आकाशवाणी श्रीनगर है। 8:30 हुए हैं। पेश खदमत है खेलों से मुतल्लिक प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम।
1: स्पोर्ट्स टाइम लेकर हम हाजिर। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 की क्वार्टर फाइनल लाइनअप का आगाज हो गया है। दो बार की आलमी चैंपियन फ्रांस ने इब्तदाई मुकाबले में मोरक्को को 2-0 से हरा दिया। यूं फ्रांस इस आलमी कप की पहली टीम बनी जिसने सेमीफाइनल में कदम रखा। पिछली रात के दौरान खेले गए इस मुकाबले में फ्रांस पूरी तरह से हावी दिखाई दिया। हालांकि उम्मीद ये थी कि मोरक्को इस मरतबा फ्रांस को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन इस बार मोरक्को के पास कायलान एम्बापे और उस्मान डेम्बेले की स्पीड और टैकल्स का कोई जवाब न था। हालांकि पहले हाफ के दौरान फ्रांसी कप्तान एम्बापे ने एक पेनल्टी जरूर मिस की, तहम इससे इनकी क्लास और हौसले पर कोई असर नहीं पड़ा। पहले हाफ के दौरान मोरक्को ने फ्रांस पर काफी दबाव जरूर रखा, लेकिन इसके स्ट्राइकर्स इसका कोई फायदा न उठा सके। पहले हाफ के दौरान कोई गोल स्कोर नहीं हुआ। उम्मीद ये थी कि दूसरे हाफ में भी दोनों टीमें बराबर की फुटबॉल खेलेंगी, लेकिन दूसरे हाफ में स्टार स्ट्राइकर कायलान एम्बापे ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि उसके पास गोल स्कोर करने की कितनी एबिलिटी मौजूद है, खासकर अहम मौकों और बड़े मुकाबलों में। एम्बापे ने 60वें मिनट में फ्रांस को बर्तरी दिला दी। इसके महज 6 मिनट बाद फ्रांस के एक और स्टार स्ट्राइकर डेम्बेली ने फ्रांस की जानब से दूसरा गोल स्कोर करके फ्रांस की जीत पर लगभग मोहर लगा दी। 52 साल के अरसे के बाद स्विट्जरलैंड किसी भी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में दाखिल होने में कामयाब हुई। वाजह रहे कि आखिरी मरतबा स्विट्जरलैंड की टीम 1954 में बतौर मेजबान वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में दाखिल होने में कामयाब हुई थी। बेल्जियम और यूएसए के मुकाबले को छोड़कर राउंड ऑफ 16 के दीगर सभी मुकाबले बेहद सनसनीखेज और बेहद करीबी रहे। हालांकि इस मुकाबले के लिए यूएसए को स्टार स्ट्राइकर फॉलेरिन बेलोगन की मुतनाज़ तौर पर खिदमात हासिल थीं, फिर भी इस मुकाबले में यूएसए बेल्जियम जैसी मजबूत टीम के सामने पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आई। वाजह रहे कि फॉलेरिन बेलोगन को इससे पहले वाले मुकाबले के दौरान रेड कार्ड दिखाया गया था और इस पर एक मैच की पाबंदी आई थी, तहम फीफा ने मुतनाज़ तौर पर इस मुकाबले के लिए ये पाबंदी हटा दी। यूं बेल्जियम ने एक तरफा तौर पर इस मुकाबले में यूएसए को 4-1 से हरा दिया। तीनों मेजबान ममालिक यानी मैक्सिको, कनाडा और यूएसए टूर्नामेंट से बाहर हो गए। यूएसए ने ग्रुप स्टेज के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा जरूर किया, तहम एक मरतबा फिर वो एक मुनजम टीम के सामने राउंड ऑफ 16 में हार गए। 2010, 2014, 2022 और 2026 यूएसए की वर्ल्ड कप में यही कहानी रही है। स्पेन ने सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के जरिए स्टॉपेज टाइम में गोल स्कोर करके पुर्तगाल

फाइनल मैच रहा है जिसका दौरान 6 घंटे 56 मिनट रहा, जिसका स्कोर 9-8, 9-1, 9-6 रहा, जो कि जोकोविच ने टाई ब्रेकर में जीत लिया था। इस मैच में रॉजर फेडरर के पास चैंपियन पॉइंट्स भी थे, लेकिन जोकोविच ने ऐसा अभिषेकन मुकाबले के बाद टाइटल अपने नाम कर लिया। इसी तरह केवन एंडरसन मुकाबला जॉन एंसर का मुकाबला सन 2018 में रहा। यह विंबलडन का सेमीफाइनल मुकाबला था जो कि मैराथन मुकाबले में तब्दील हो गया। इसका दौरानिया भी काफी तवील रहा, जो कि 9 घंटे और 39 मिनट तक जारी रहा। इसमें स्कोर कुछ इस तरह रहा, 9-6, 6-9, 9-5, 29-23, जो कि एंडरसन ने जीत लिया था। इस तारीखी मैच के सनसनीखेज लम्हात और खिलाड़ियों के जद्दोजहद टेनिस शायकीन को अब तक याद हैं। इस लंबे मैच की वजह से टेनिस कवायद और जबाइत हमेशा के लिए बदल गए। टूर्नामेंट के तवील शेड्यूल में खलल पड़ने के बायस मुंतजमीन ने फैसला किया कि फैसला कुन फिफ्थ सेट में 9-9 की बराबरी पर टाई ब्रेकर खेला जाएगा। टेनिस की दुनिया में एक और सनसनीखेज मुकाबले में 24 जून 2010 का दिन भी एक अजीब गरीब खेल देखने को मिला, जो कि 10 घंटे जारी रहने के बाद भी फैसला कुन मरहले

0: بھی کرا دیا ہے۔ آج کی سپورٹس ٹائم سے ہمیں یہیں پہ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ سپورٹس ٹائم،
1: آپ کھیلوں سے متعلق پروگرام سماعت کر رہے تھے سپورٹس ٹائم، میزبان تھے اعجاز ناز کی، پروگرام کے پروڈیوسر ہیں وسیم فاروق۔ یہ آکاشوانی سری نگر ہے، میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر۔ 8:45 ہونے والے ہیں، تھوڑی دیر میں ہم آکاشوانی دلی سے ہندی میں خبریں ریلے کریں گے، خبروں کا انتظار فرمائیے۔
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
3: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
4: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
3: And then we can sell to further markets as well.
2: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
5: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त

0: किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने

0: मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। रात के 9 बज चुके हैं। समीन, चंद फिल्मी नगमे हम आपके लिए लेके आए हैं। पहले पेश है किशोर कुमार का गाया हुआ नगमा। फिल्म है परिचय। गीतकार हैं गुलजार और मौसीकार R.D. बर्मन।

आपने परिचय फिल्म से नगमा सुना। किशोर कुमार की आवाज में नगमा था। गीतकार थे गुलजार और मौसीकार आर डी बर्मन। अब जो नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने फिल्म गोलमाल से लिया है। गीत लिखा है गुलजार ने, मौसीकी तरतीब दी है।

0: आपने फिल्म बंदनी से नगमा सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार थे गुलजार और मौसीकार कल्याण जी, आनंद जी। तो दोस्तों, ये थे चंद फिल्मी नगमे। आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। 9:15 हो रहे हैं। थोड़ी देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें रिले करेंगे।
1: आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हममनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उमानी हममनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में तआवुन के मामलात पर तबादला ख्याल किया। पार्लियामानी उमूर के वज़राए ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। रेलवे ने सेफ्टी और ऑपरेशनल कारकर्दगी में इजाफा करने की गरज से शिमाली रेलवे के 680 रूट किलोमीटर्स पर कवच डिप्लॉयमेंट की मंजूरी दी है। फुटबॉल में आज रात फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड पहुंचने पर पुरजोश और शानदार इस्तकबाल किया गया, जो न्यूजीलैंड के उनके 2 रोज़ा तारीखी दौरे का आगाज है। उनका यह दौरा तकरीबन 4 दहाइयों में किसी भारतीय वज़ीर आज़म का पहला दौरा है। यह उनके 3 मुल्कों के दौरे का आखिरी मरहला है। आज ऑकलैंड पहुंचने के बाद न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लेक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां बड़ी तादाद में भारतीय कम्युनिटी के अफराद मौजूद थे। माहौल जोशो खरोश से भरा हुआ था, क्योंकि लोग उनका खैर मकदम करने के लिए भारतीय तिरंगा लहरा रहे थे और किया ओरा मोदी के नारे लगा रहे थे। जनाब मोदी ने आज शाम ऑकलैंड में कम्युनिटी के खैर मकदम के दौरान भारत की मालामाल सकाफती विरसे की शानदार तकरीब देखी। सोशल मीडिया पोस्ट की एक सीरीज में वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब और तमिलनाडु की सकाफत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी और वंदे मातरम की मशहूर कुन पेशकश की परफॉर्मेंस काबिले दीद थी। जनाब मोदी ने नस्लों और बर्र आज़मों में भारत की सकाफती विरासत को जिंदा रखने और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आवाम से आवाम के राब्तों को मुस्तहकम करने के लिए भारत निजात कम्युनिटी की सताइश की। अपने दौरे के दौरान तवक्को है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, टेक्नोलॉजी और आवाम से आवाम के राब्तों में तआवुन को मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल कर सकते हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी की अक्कासी करता है। न्यूजीलैंड में भारत की हाई कमिश्नर मुआन पुई साईवी ने उम्मीद जाहिर की है कि यह दौरा बाहमी ताल्लुकात में नई रफ्तार फराहम करेगा। उन्होंने ये कहते हुए इस साल अप्रैल में दस्तखत किए गए भारत न्यूजीलैंड आज़ाद तिजारती माहदे को भी उजागर किया कि यह तिजारत और कॉमर्स, समंदरी सिक्योरिटी, आवाम से आवाम के दरमियान ताल्लुकात, सकाफती, सियाहती और इंसदादी दहशतगर्दी के मामलों में तआवुन ने मजीद तौसी फराहम करेगा। इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का एक तारीखी और इंतहाई अहम दौरा मुकम्मल किया, जो भारत ऑस्ट्रेलिया जामे और मुकम्मल शराकतदारी के लिए मुस्तकबिल महफूज ब्लूप्रिंट फराहम करता है। आला इख्तियारी मीटिंगों से लेकर नुमाया संग मील तक इस दौरे ने 2 बड़ी जमहूरियतों के दरमियान सिफारती, इक्तसादी और तहफ़ुज़ाती ताल्लुकात में इजाफा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और आवाम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीस का अपने दौरे के दौरान पुरजोश मेज़बानी के लिए शुक्रिया अदा किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में हुकूमत मुल्क की साहिली सिक्योरिटी को मजबूत और नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म है।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: समीन 10:10 सपित बोलियो कि नातिया कलम बुझो गोर्च पेश कलाम मोहम्मद अब्दुल्ला देव नदीम फनकार शमीमा देव

आकाशवाणी श्रीनगर। ज़मीन पेश खदमत खसूसी प्रोग्राम बिल मुशाफा आत्मजबूजी मशहूर शायर तो कलमकार फैजल कश्मीरी सबस सदा जुलाई कुनशत नमतमस मज सदा बंद करना आमुत इंटरव्यू इंटरव्यूअर रफीक राज बुजू प्रोग्राम बिल मुशाफा।

0: पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland marking the start of his historic two-day visit.

पहाड़ी प्रोग्राम नष्ट होगा 4 बजे। इस प्रोग्राम के कॉम्पियर हैं शब्बीर अहमद। हफ्तवार शीना प्रोग्राम समाप्त कीजिएगा 4:30 पर। मेज़बान हैं शहनवाज सामून। गोजरी प्रोग्राम नष्ट होगा 5 बजे। मेज़बानी के फ़रज़ अंजाम देंगे जाकिर हुसैन। देहाती भाइयों के लिए प्रोग्राम गंदी बाइन हिंद खतर नष्ट होगा 6:05 पर। हालत हाजरा पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन आप हमारे यहाँ से समाप्त करेंगे 7:00। प्रोग्राम वादी की आवाज़ पेश खदमत होगा 8:00 और 8:30 पर ज़िला नामा नश्र होगा। कल का ज़िला नामा ज़िला बड़गाम से मुतल्लिक है। तो ये हैं हमारे कल नश्र होने वाले चंद प्रोग्राम।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 11:15 हुए हैं। हमारी आज की नशरियात अब बर्खास्त होती हैं। कल की नशरियात के साथ सुबह

0: marketers possibly choosing to believe that. But in our case, the IT bit is something, it's not so much the individual company, but the signal that people are taking, that as to, you know, from that company that people are trying to take a signal that things may not be as difficult or as dire, and it's turned out to be a little better, and people expect that more to continue. Mm-hmm. With the results coming in.
1: As they say, markets are dependent on sentiment, and the sentiment is all is well.
0: Yeah.
2: उदन जो आज हमने तेजी देखी लगभग 1% से अधिक की बढ़त रही है, तो ये सिर्फ एक दिन की हम तेजी मान सकते हैं क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, तो आने वाले अगर सप्ताह की बात करें तो एक नए बुल रन की शुरुआत इसे माना जा सकता है, या मार्केट जैसा दिखा कि पिछले दो सप्ताह में जैसा परफॉर्म कर रहा था, इस हफ्ते में शायद थोड़ा सा सहारा मिला है मार्केट को, जिसमें घरेलू निवेशकों से ज्यादा विदेशी निवेशकों का सहारा ज्यादा मिला, तो क्या कह सकते हैं इस पर?
0: देखिए, आपने जो विदेशी निवेशक के बारे में कह रहे हैं, उनकी वापसी तो थोड़ी बहुत हुई है, मतलब उस लेवल की नहीं हुई है पर वापसी हुई है। अब जो आपके जो नतीजे आएंगे उससे काफ़ी कुछ डिपेंड कर रहा है। अब जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी कई जगह से, कई क्षेत्रों से काफ़ी सकारात्मक है, तो उस पीछे की ये खबरें हैं जो कि आती रहेंगी। अब एक तो वहाँ से आएंगी जो पीछे की जो नतीजे, क्वार्टरली जो तिमाही जो नतीजे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ रेजिलियंस देखने को मिल रहा है। जो रिपोर्ट्स अब आ रही हैं कि अप्रैल मई जून में काफ़ी इतने चैलेंज होने के बावजूद भी वो सेक्टर FMCG मानिए, बाकी मांगे, वहाँ पे एक दृढ़ता देखी गई है। पर आगे चल के जो मॉनसून का जो प्रोग्रेस है, उसकी जो प्रगति है, कितना अच्छा स्प्रेड होता है, कितना कुछ कोई डेफिशिएंसी नहीं आ जाती है, एक चिंता थी, तो वो काफ़ी कुछ हेडलाइंस को रादर मार्केट सेंटिमेंट को, मार्केट के मूवमेंट को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। और क्योंकि आप पूरा आपके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे जो खरीदारी होती है, जो कंजम्पशन, जो त्योहारों के वक्त हैं, तो वहाँ से वो निष्कर्ष निकाला जाएगा, वहाँ से वो आकलन किया जाएगा, और वहाँ से वो आप मान सकते हैं उसको इन्फ्लुएंस जरूर होगा, क्योंकि कंजम्पशन के जो से जुड़े हुए, खपत से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर मॉनसून की प्रगति का और किस क्वालिटी की वो होती है, वो काफी कुछ डिपेंड।
2: तो इसमें ये मान सकते हैं कि बाजार को आगे मुनाफा वसूली के लिए तैयार रहना चाहिए, आपका ऐसा अंदाजा है क्या?
0: नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। आप अगर उतना मतलब कभी अगर देखिए, जो खाड़ी में जो संघर्ष है वो अभी तक वो निपटा नहीं है, एंड तो वो क्योंकि वो निपटा नहीं है, तो जब जब आपके खबरें आएंगी, अगर वो सकारात्मक खबरें नहीं हैं, तो फिर वो उसका एक असर तो पड़ेगा, क्योंकि सीधा आप

0: प्रतिशत ऊपर आ गया। जापान का निक्केई सूचकांक 1.2% लाभ में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.6% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.6% ऊपर चढ़कर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1% नीचे आ गया, जबकि चक्रवात बावी की वजह से आज ताइवान का बाजार बंद रहा। दिन ओवर वैल्यूएशन का इस एशियाई बाजार में क्या रुख रह सकता है?
1: देखिए, ओवर वैल्यूएशन की अगर बात की जा रही है, अब तो इतना बीटन डाउन हो गया हमारे जो लार्ज कैप्स हैं, कोई अब अगर कोई कंप्लेन करे कि आप ओवर वैल्यूड है, वो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड सुनते सुनते ही 6-7 महीने हो गए। तो कई लोग अभी भी शायद आर्ग्यू करें, पर वहां से तो काफी मूवमेंट हुई थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। अब धीरे धीरे करके वो वाला जो थीम है वो शायद वो ना रहे, और कुछ दूसरे किस्म के, दूसरे कैपिटलाइजेशन के जो स्टॉक्स हैं, कई लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि वहाँ पे अच्छे आपको बारगेन्स मिल रहे हैं। अब ये तो इंडिविजुअल उसके बारे में बात है कि वो वैल्यूएशन को कौन से को वाजिब सोचेगा, बट इट्स अभी जो जिस हाल में है वो अगर आप कोई मुझसे पूछे, वो 6-7-8 महीने पहले जो स्थिति थी उसे तो मैं कहूंगा बेहतर है। तो इसलिए अगर कोई बार्गेन, जैसे आप दुकानों में बार्गेन लेने जाते हैं, कोई डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, अगर बार्गेन वाली बात अगर आ रही है तो शायद अब शायद बार्गेन वाली स्थिति बेहतर है वनस्पति इसके की 6-7 महीने पहले जो थी। और मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं, और इस ये ऐसा वक्त है जहाँ पे जो रेगुलर छोटे इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या जो भी अदर एनपीएस के थ्रू कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो मार्केट्स में वो पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि यही उससे उनका एवरेज जो खरीदारी
0: होगा,
1: जो कॉस्ट है वो एक मैनेजेबल लेवल रहेगा। जब अपवर्ड मूव होगा तो उसमें उनको गेन्स मिलेंगे।
0: राइट,
2: सो अर्लियर वी यूज्ड टू से ऑयल एंड नाउ वी से इन लाइटर वे अगेन दैट सेमीकंडक्टर इज द न्यू चिप ऑन द ब्लॉक, हूएवर हैज द सेमीकंडक्टर इज रूल्स द वर्ल्ड।
1: या व्हाट हैज आल्सो हैपेंड इज, यू नो, it happens in every market. First there are darlings, people, you stocks that you like, then you say that this is too overvalued, what do we do, is there somebody who looks like the superstar but is not a superstar yet? So that's how there are certain, even in semiconductors you find certain companies which have certainly caught the eye, and people are sort of attracted or towards those stocks. So sometimes what happens is you move towards one particular counter or stock, and then after a point of time it gets beaten down a little bit. So those things are happening, those are interesting things. Yes, semiconductors are going to be there, they're going to influence market movements, because that is going to become, one thing is there, whether you agree with me or not, the way technology has come into our lives, whether it's mobile phones or whatever, AI, so almost everything that is being offered is on a technological platform.
2: Absolutely.
1: So every company is a technology company which is offering something. So that's how we have become. And if the infrastructure is going to be based on semiconductors, then it is like oil, data and semiconductors and stuff like that, anything related to it is going to be very crucial. And especially market sentiments and market movements is going to keep determining.
2: Right. And now look at the forex reserves. Well, India's foreign exchange reserves rose over $7.2 billion to over $674 billion during the week ended July the 3rd. According to the Reserve Bank of India data, foreign currency assets, the largest component of the reserves, increased by $4.5 billion to over $545 billion during the week. Gold reserves rose around $2.7 billion to over $105 billion.
0: इस वर्ष जून में भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 26% से अधिक बढ़कर 28,973 करोड़ रुपए हो गया, जबकि मई में ये 22,908 करोड़ रुपए था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के डेटा के अनुसार जून में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी में 31,781 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो मई के मुकाबले 2.7% ज्यादा है। इक्विटी में जून महीने के दौरान मिड कैप

0: फंड में सबसे ज्यादा निवेश आया, जिसकी कुल धनराशि 6000 करोड़ रुपए से अधिक रही। इसके बाद स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड और लार्ज कैप फंड का नंबर रहा। वहीं गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के मामले में रुख उल्टा हो गया। पिछले महीनों में मुनाफा वसूली के बाद इसमें 3443 करोड़ रुपए का निवेश आया। हालांकि जून में डेट फंड से निकालने पैसे का सिलसिला जारी रहा। कुल मिलाकर 1,09,000 करोड़ रुपए निकाले गए। उस दिन ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, कहां मई में 22,908 करोड़ और अभी जून में 28,973 करोड़, क्या इससे हम कह सकते हैं कि ये एक शिफ्ट है जो म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहा है, या बाजार का प्रभाव अभी का देखते हुए, बाजार के हाल को देखते हुए थोड़ा सा सोचने में बदलाव आया है निवेशकों के?
1: उत्साह बढ़ा है जो जब आपका ये कोई हमारे देश वाली बात नहीं, जहाँ पे भी मार्केट्स अच्छा करती हैं वहाँ पे उत्साह बढ़ जाता है और निवेश बढ़ जाता है, क्योंकि आप इसे रिसेंसी बायस कहते हैं बिहेवियरल फाइनेंस में, कि जो अभी अभी हो रहा है वो हमारे जो निर्णय ले रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ना कि हम 3 साल 5 साल का हम नहीं देखते हैं। वैसे देखना चाहिए पर हम देख नहीं पाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये उत्साह बढ़ा है, क्योंकि थोड़ा बेहतर इम्प्रूवमेंट हुई तो वहाँ पे ये आपने इस उत्साह को पाया। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो हम यहाँ पे कह नहीं पा रहे हैं और जो मुझे लगता है वो ये है कि एक स्तर बना रहा है। इतना कुछ हो गया तब भी हमारे निवेशक डटे रहे हैं और एक वेरी हाई लेवल ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स होती चली जा रही है। मतलब अगर इक्विटी को, स्टॉक्स को, शेयर्स को, भारत के भविष्य के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में अगर कहा जाए तो वोट वो मिल रहा है कंटिन्यूअसली हमारे निवेशक। तो कहते हैं ना कि वो शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन और व्हाटएवर, एक किसी महापुरुष ने कहा था। तो वो बात यहाँ पे बिल्कुल लागू हो रही कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लगातार मिलता चला जा रहा है।
0: इसमें एक चीज और है कि ETF में लगातार निवेश बढ़ रहा है, जबकि मुनाफा वसूली भी बड़े पैमाने पर हमने देखी है बीते दिनों में।
1: देखिए मुनाफा वसूली कई बार क्या हो जाता है कि कहना बड़ा मुश्किल है। अब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को, गोल्ड में जो निवेश हम करते हैं उसको एक शॉर्ट टर्म उसमें ना लेके करना चाहिए, बट एनीवे अगर हो रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं। मेरा इंटरेस्ट तो ये है कि इक्विटीज में, इसका मतलब इक्विटी कल्चर हमारे देश में आ गया है। हम रिस्क, अगर मार्केट्स डाउन जाते हम नर्वस नहीं हो जाते। पहले क्या होता, बिल्कुल खाली हो जाती थी, बिल्कुल डीमैट से डीमैट भी बिल्कुल वीरान हो जाते थे। वो चीज नहीं हो रही, वो हिम्मत है, वो स्टमक है, वो जोश जज्बा है एंड कॉन्फिडेंस, जो वोट है, वोट फॉर द फ्यूचर, वो मिल रहा है एंड वो इन खबरों से लगातार आती जा रही है।
2: Well, we've had the unprecedented number of demat accounts opened in the last 1 year, and that says it all about the Indian markets. Well, moving on, Prime Minister Narendra Modi arrived in Auckland today on the final leg of his three-nation tour. PM Modi will hold talks with his New Zealand counterpart, Mr. Christopher Luxon. Both leaders will review the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of trade, commerce and defence. In an interview to Akashvani, Dr. Rahul Sen, economist and senior lecturer at Auckland University of Technology, said the bilateral relationship between India and New Zealand has a lot of potential to grow.
3: To me, this opportunity to take the bilateral trade relationship between New Zealand and India, which I would say has a lot of potential to grow, because currently India is the 11th largest trading partner of New Zealand, not even in the top 10. And clearly, this FTA should have the potential of taking India up the ranking of New Zealand's trade easily among the top 5. This FTA is providing opportunities for investments coming in from New Zealand to India, with an aspiration of about $20 billion of investment coming in over the next 15 years.
2: Against this backdrop, Prime Minister Modi's visit assumes even greater significance. Tomorrow, he will participate in a major business event where discussions will focus on trade, investment and expanding economic cooperation between the two countries. Udayan, first the Prime Minister goes to Australia, now New Zealand. Is energy security central to this whole trip and trade deal?
1: Absolutely. Lalima, you would have seen in the budget and other places the pronouncements regarding nuclear energy. Mm-hmm. So we want smaller reactors. We don't want those mega projects. And we want to crack this energy thing quite a bit. We cannot become

0: AI, world power without having power. So
1: Yes.
0: we need that power as a critical area of power, water. So energies and also things like LNG and others, those are also equally important. Coal is important. So this particular part of the globe is actually much more important that people like me normally think.
1: Yeah, and Australia has good quality and quantity of uranium, which we
0: Yes,
1: need.
0: absolutely, absolutely.
1: Right.
2: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने आज कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव दोबारा बढ़ने से 2027 में दुनिया भर में तेल की भारी अतिरिक्त आपूर्ति का उसका अनुमान गलत साबित हो सकता है। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जून में वैश्विक तेल आपूर्ति 4.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन बढ़कर 98.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गई। ये बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य के पास फंसे टैंकरों ने अपनी यात्राएं फिर से शुरू कर दी हैं। इस सुधार के बावजूद वैश्विक उत्पादन युद्ध से पहले के स्तर 9.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम है। एजेंसी का अनुमान यह भी है कि इस साल वैश्विक तेल की मांग में 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी आएगी क्योंकि 2027 में इसमें 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी होगी। ये 6 वर्षों में पहली वार्षिक गिरावट होगी। एजेंसी का अनुमान यह भी है कि इस साल 3.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी के बाद अगले साल ऑयल सप्लाई में 7.7 मिलियन बैरल
1: And global crude oil prices rose today as renewed geopolitical concerns reignited worries about supply disruptions. Brent crude was trading 0.7% up at $76.84 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading over 0.5% up at $72.48 per barrel when reports last came in. And let's talk about the Indian bullion market, where 24-carat gold was trading 0.8% down at 1,44,720 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.8% down at 2,22,610 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.7% नीचे आकर 1,44,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.8% की गिरावट के साथ 2,22,345 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। उद्यम जी, बहुत ही कम शब्दों में क्रूड ऑयल के बारे में आपके विचार क्या होंगे?
0: ये देखिए, ये जैसे जैसे वहाँ पे संघर्ष का कितना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप जैसे आपने कहा 9 मिलियन बैरल्स का फर्क है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो अल्टरनेटिव सोर्सेज में से वहाँ पंप करना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाता है, आर्थिक वृद्धि का दर विश्व में कम हो जाता है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो एक सप्लाई एंड डिमांड में एक एडजस्टमेंट होगा।
1: राइट, थैंक यू उदयन फॉर ज्वाइनिंग अस इन द स्टूडियोज एंड अपडेटिंग अस।
0: थैंक यू लालू।
1: एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस गेन ओवर 1%, सेंसेक्स एड्स मोर देन 800 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,200. Most Asian stock market indices end in positive territory and global crude oil prices rise. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Nikhil Kumar, signing off. Namaskar.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

सुना है कि अगर कोई दिल में उतरना चाहे तो बहुत सारे बहाने हैं। एक प्यारी सी मुस्कान, थोड़ी सी खामोशी, कुछ अनकही बातें और थोड़ा सा अपनापन। जी हाँ श्रोताओं, यही वो चाबी है जो हर

दिल का ताला खोलती है। जी हाँ, यही अंदाज लिए आज इस वीराने में बहार लेकर आप तक पहुंच गए हैं गीत मेरे मन मीत लेकर। स्टूडियो से साथ हूँ मैं रोहिणी। जी हाँ श्रोताओं, अपने कार्यक्रम को आप तक पहुंचाएंगे बेहद प्यारे और सदाबहार गीतों के साथ। तो आइए आगाज करें आज के गीत मेरे मन मीत का इस प्यारे से गीत के साथ, जो कि है चोरी चोरी फिल्म से लता जी और मनारी की आवाज में। इस गीत को आप सुनेंगे, इस गीत को अल्फाज दिए हैं हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने।

वैश्विक मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम कूल चैनल और प्रोग्राम आपका पसंदीदा गीत मेरे मन में। ये अगला गीत जो आप सुनेंगे अप्रैल फूल फिल्म से है, लता जी की आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज।

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं गीत मेरी मनमीत। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 11:51 और 6 सेकेंड। और श्रोताओं, ये अगला गीत 30

तीसरी मंजिल फिल्म से आप सुनेंगे मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत से सजाया आदि बर्मन जी ने।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। फिलहाल समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि अपने सफर को आगे बढ़ाएं, तो फिलहाल मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत। और कहते हैं ना, बातें तमाम मुकम्मल हुई जरूरी तो नहीं। जी हाँ, ये मुलाकात अभी और कुछ आगे बढ़ेगी। जी हाँ, फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर मिलूंगी। इंतजार रखिएगा और सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। ये अगला गीत जो आप तक पहुंच रहा है आशा जी और रफी जी की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस गीत को संगीत से सजाया है, तो अल्फाज दिए आनंद बख्शी जी ने। हम जूली फिल्म से ये गीत आपकी नजर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है।

0: न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कोयला मंत्रालय ने कल वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण तथा 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां खोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया जो देश में वाणिज्यिक कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में अब से थोड़ी देर में रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले कल फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शाम की रंगीनियां और सब सुहानी याद है। शाम की रंगीनियां और सब सुहानी याद है। सब हकीकत भूल बैठी एक कहानी याद है। आंसुओं से बनाती हूँ मैं तेरी तस्वीर, आंसुओं से बनाती हूँ मैं तेरी तस्वीर। मेरी आंखों को तेरा चेहरा जबानी याद है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12, शुरू हो चुका है प्रोग्राम निशिगंधा। निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज के साथ।

जब बात दीवानों की चली है तो बात दूर तक जानी चाहिए, शायद वहां तक जहां हम ये ना जान जाएं कि ये लोग कभी अकेले नहीं होते। किसी का इंतजार, किसी का ख्वाब हमेशा इनके साथ चलता है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी थोड़े थोड़े दीवाने होते हैं। पूछो कैसे, किसी की याद में, किसी के प्यार में, है ना। फिलहाल हमें इंतजार है एक प्यारे से गाने का, अगला गीत किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में।

आपको पता है, जब मैं ये गाना सुन रही थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, और वो ये था कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को देखा हो और उसने भी आपको देखा हो और फिर ऐसा लगा हो कि टाइम रुक गया। अगर ऐसा कुछ फिल्मी किस्सा आपके साथ हुआ है तो फिर स्माइल कर, तो फिर स्माइल स्माइल करते हैं तो आपकी स्माइल मुझ तक पहुँचती है और हम जुड़ते हैं दिल से दिल तक। अगला गीत आप ही के लिए।

कहते हैं कि वादे टूट जाते हैं, लेकिन जो वादे आंखों से किए जाते हैं वो कभी नहीं बदलते। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी होते हैं, और अगर इस बिजी ज़िंदगी में आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसकी आंखों में आपको अपना अक्स दिखता है, तो आप खुशनसीब हैं। उनके लिए आज का दिन थोड़ा खास बनाने की कोशिश करते हैं। प्यार का यह एहसास यूं ही बना रहे। अगला गीत अभी के लिए

एक पूरा जीवन लुटाया जा सकता है प्रेम की तलाश में, एक पूरा जीवन लुटाया जा सकता है प्रेम की तलाश में। एक प्रेमी तो ठहराव बनकर सबके हिस्से आना ही चाहिए। मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:39 और 54 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। सुन रहे हैं आप अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जब मौसम की बात चली है, दिल की बात चली है, तो फिर इस हसीन सफर में रुकना मना है। जब समा इतना प्यारा हो और दिल पूरी तरह से मिजाज में हो, तो प्यार में लंबे चौड़े वादे न करके पल भर का प्यार मुकम्मल किया जाए। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में आप ही के लिए।

कभी कभी हम किसी के प्यार में इस कदर खो जाते हैं कि हमें उस इंसान की झूठी तसल्ली भी सच्ची लगने लगती है। होता है आपके साथ ऐसे? मेरे साथ भी होता है। बस वो इंसान हमारे साथ कुछ पल बिता ले, वही हमें बहुत कुछ लगता है। अगर इस गाने को सुनकर आपके दिल में कोई नाम धड़कता है, कोई ऐसा नाम जिससे आज भी आपको उम्मीद है, चाहे वो पल भर के लिए ही क्यों ना हो, तो इस गाने के साथ उसे याद करते हैं आज। अगला गीत आशा जी और महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

ऐसा लग रहा था ना जैसे किसी ने जलते हुए शहर में एक ठंडी छांव ढूंढ ली हो, ठंडा किनारा ढूंढ लिया हो, सुकून वाली एक जगह मिल गई हो। अगर आप भी इस वक्त अंधेरे में सिर्फ रेडियो और आवाज के सहारे बैठे हुए हैं तो यकीन मानिए आप यकीन नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपको तो मालूम ही है अंधेरे में मेरी आवाज लगातार आपका पीछा करती है। अगला गीत आप ही के लिए।

जब दिल ने अपना बोल ही दिया है तो ये सफर लंबा जाएगा। फिलहाल निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साईवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।

0: sell to further markets as well.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच दल SIT का गठन किया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था कल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में प्रवेश कर गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद ये जत्था आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन और बेल्जियम के बीच मुकाबला जारी है। इससे पहले कल फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने 7 बार के विंबलडन विजेता नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेगाहर्ट्स पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 9 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम एक ऐसा दौर जो इतिहास से, स्मृतियों से, हमें संगीत से आवाज देते, हर आवाज के साथ, किशोर कुमार और आशा जी की आवाज के साथ।

फिल्म का नाम दिल्ली का ठग और आवाजें थी किशोर कुमार और आशा जी की, संगीत रवि का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1958 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था एसडी नारंग ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी किशोर कुमार, नूतन, मदनपुरी, इफ्तिखार और इस फिल्म का संगीत रवि ने दिया था और इस फिल्म के जो गीत थे वो लिखे थे एसएच बिहारी, शैलेंद्र और मजरू सुल्तानपुरी ने। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में, फिल्म चोरी चोरी से।

मन्ना डे की आवाज में सुन रहे थे आप ये खूबसूरत गीत फिल्म चोरी चोरी से। चोरी चोरी 1956 में प्रदर्शित हुई थी और ये एक बहुत ही लोकप्रिय रोमांटिक फिल्मों में से एक थी। और इस फिल्म का निर्देशन किया था अनंत ठाकुर ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर, नरगिस ने, और भगवान दादा प्राण, डेविड, जॉनी वॉकर सहायक भूमिकाएं निभाई थी उन्होंने। और इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। और इस फिल्म के संगीत की लोकप्रियता ने इस फिल्म को बहुत ही कामयाबी दिलाई थी। और ये फिल्म हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्मों में से एक मानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि 1991 में प्रदर्शित फिल्म दिल है कि मानता नहीं इस फिल्म की कहानी से प्रेरित है। और अब अगला गीत अब तक पहुंच रहा है फिल्म कोहिनूर से, रफी साहब और लता जी की आवाज़ में।

फिल्म का नाम कोहिनूर और आवाज थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, संगीत नौशाद साहब का और गीतकार शकील बदायूनी। अगर इस फिल्म की बात करें यानी कोहिनूर फिल्म की बात करें तो ये रिलीज हुई थी 1960 में और ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी जिसको प्रोड्यूस किया था वी एन सिन्हा ने और डायरेक्ट किया था एस यू सनी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी दिलीप कुमार, मीना कुमारी, लीला चिटनिस और कुमकुम ने। संगीत नौशाद साहब का था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफल रही थी और साल 1960 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। और अब अगला गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में।

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:38 और 52 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

फिल्म खानदान से सुना आपने ये सदाबहार गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत रवि का था और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। अगर इस फिल्म की बात करें, खानदान फिल्म की बात करें, तो ये रिलीज़ हुई थी 1965 में और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी सुनील दत्त, नूतन, ओम प्रकाश, ललिता पवार और मुमताज़ ने। इस फिल्म का निर्देशन किया था ए भीम सिंह ने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। और इस फिल्म का हिट होने के पीछे सबसे प्रमुख जो कारण था वो था इसका संगीत। इस फिल्म के संगीत को दर्शकों द्वारा खासा सराहा गया। और अब अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ मंजू, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने।

गीत सुहाने प्रोग्राम का आज का संगीत भरा सफ़र यहीं तक। अब से थोड़ी देर में यानी कि 2 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपुई साईवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने विशाखापत्तनम में नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदल

0: बढ़ते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। जम्मू फिल्म महोत्सव JFF के 5वें संस्करण को दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। ये फिल्म महोत्सव जम्मू में 28 और 29 सितंबर को आयोजित होगा। इस संस्करण में अब तक 35 देशों से 180 फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अमेरिका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उभरते खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। यह सम्मेलन 16 जुलाई को अमरीकी विदेश विभाग में होगा। इस बैठक में यूरोप, लैटिन अमरीका और एशिया के देश और गृह मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य उभरते सुरक्षा खतरों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना है। क्रिकेट में लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले महिला टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंदाना ने शानदार 83 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतक लगाए। इंग्लैंड की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने 3 विकेट लिए जबकि मैंडी विलियर्स और इसी वोंग ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland yesterday, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland. During his visit, Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between the two countries. Indian High Commissioner to New Zealand, Muanpui Saivui, expressed hope that the visit will provide fresh momentum to bilateral ties. She also pointed to the India-New Zealand Free Trade Agreement signed in April this year, saying it would further expand cooperation in trade and commerce, maritime security, people-to-people ties, culture, tourism and counter-terrorism.
2: We will be building on the things that we've already worked on. So free trade agreement is signed, but it has to be ratified and we have to push it towards the unlocking the full potential of the free trade agreement. So there are some things about trade and commerce. There will be some things about tourism, culture, sports diplomacy, and also under the economy piece, there will be more on horticulture, agriculture, and education as well. So there are many, many aspects of it, including maritime security. As
1: India prepares to commission the indigenous stealth frigate Mahendra Giri into the Indian Navy, Defence Minister Rajnath Singh has reaffirmed that India remains the primary guarantor of peace and stability in the Indian Ocean region. Addressing the naval personnel during the Barakhana in Vishakhapatnam yesterday, he said the Indian Navy is playing a vital role in safeguarding the nation's maritime interests amid an increase.

वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया। वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया। उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। ना गिला किया ना खफा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए। ना तू बेवफा ना मैं बेवफा, जो गुजर गया सो गुजर गया। वो गजल की कोई किताब था, वो गुलों में एक गुलाब था। जरा देर का कोई ख्वाब था, जो गुजर गया सो गुजर गया। मुझे पतझड़ों की कहानियां ना सुना सुना के उदास कर, मुझे पतझड़ों की कहानियां ना सुना सुना के उदास कर। तू खिजा का फूल है, तू खिजा का

फूल है मुस्कुरा, जो गुजर गया सो गुजर गया, वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके न दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, स्वादिष्ट मिलो एक, मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:13 और 4 सेकंड। रात सुरमई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी यह एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के दर्द को, रात के एहसास को अपने गीतों से, अपनी गजलों से, अपनी कविताओं से, अपनी बातों से रात के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सदाबहार गीत के साथ।

0: जब निगाहें मिलाने को जी चाहने लगे और दीदार को दिल तरसे, तो समझो इश्क सातवें आसमान पर है। और जब इश्क सातवें आसमान पर है तो फिर ये वाला गाना सुनना तो बनता है। अगला गीत फिल्म सत्ते पे सत्ता से, वो इश्क ही क्या जिसमें सर न झुके।
1: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो, झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
2: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: होता क्या?
1: अब तुम करके दिखा, कैसे बोलोगे?
2: How do you do?
1: Ha! How do you do?
2: I love you.
1: ओहो, I love you इतनी जल्दी नहीं रे बाबा।

0: I like you.
1: हाँ, अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा। खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
1: हाँ,

0: वैसे जब कोई इतनी शिद्दत और अदब से प्यार का इजहार करे तो कोई कैसे अपना दिल ना हारे, है ना। सच्चा प्यार भी तो यही होता है, जहाँ जुबान से पहले आंखें झुक जाती हैं, दिल की धड़कनें अचानक बढ़ जाती है। अगर इस गाने को सुनकर आपकी दिल की धड़कनें भी बढ़ गई हैं, तो ये अगला गीत आप ही के लिए, अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।
1: मेरी

वो जो पहली मोहब्बत वाली घबराहट होती है ना, वही है इस गाने में। जब आप सामने वाले से बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर शब्द नहीं मिलते, समझ नहीं आता कि इश्क को कहा कैसे जाए, और बस वहीं पर एक प्यारी सी मुस्कान सब कुछ कह देती है। कितना खूबसूरत होता है ना वो एहसास जब कोई आपके सामने आए और आपकी धड़कनें अचानक से बढ़ जाए, आपको वो शब्द ना मिले जिसमें इस खूबसूरत इश्क का इजहार किया जाए। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है किशोर कुमार की आवाज़ में।

सूरज ने कभी वादा नहीं किया सुबह से मिलने का। सूरज ने कभी वादा नहीं किया सुबह से मिलने का, जबकि वो हर रोज मिला। नदियों ने कभी नहीं कहा सागर से, जबकि वो मिली। पेड़ों ने कभी नहीं किया वादा हमसे, जबकि उन्होंने फल दिया। जहां आश्वस्ति होती है वहां वादा नहीं होता। वादा खुद से किया गया एक छल है। दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:40 और 50 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

0: पर।
1: कुछ भी कहो, पहली मुलाकात का जादू ही कुछ और होता है ना। जब आप घंटों आईने के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि कौन से कपड़े पहने जाएं, बाल कैसे बनाए जाएं, पहली मुलाकात में क्या बात की जाए, दिल की धड़कनें इतनी तेज होती हैं कि लगता है कि सामने वाले को सुनाई ना दे जाए। सच बताऊं दोस्तों, जिंदगी में हम कितनी भी मुलाकातें क्यों ना कर लें किसी और से, पर जो पहली मुलाकात का जादू होता है वो हमेशा दिल के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़ास होता है। और वो पहली मुलाकात कब प्यार में बदल जाती है हमें भी नहीं पता चलता। अगला गीत आप ही के लिए।

वैसे ये बात तो सच है कि प्यार कभी पूछ कर या बता कर नहीं होता, और ये तो बस चुपके से हवा के झोंके की तरह आता है और पूरे दिल पे छा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत की सबसे बड़ी खासियत भी यही है और खूबसूरती भी यही है कि इसका कोई वक्त नहीं होता और कोई जगह नहीं होती। बस दिल हार बैठे तो हार बैठे। अगर आपके दिल में भी इस वक्त किसी का चेहरा घूम रहा है तो याद कीजिए इस गीत में उस इंसान को

इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या ख़त्म होती जाती हैं। और पंचम मेरी जिंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। पंचम के साथ मैंने बहुत फिल्मों में काम किया।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमरा ही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी वंदना चुग। मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुतियों ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों की सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: Free trade agreement is a great opportunity.
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र कल समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे की जांच सीआईडी और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूरो की अंतिम रिपोर्ट अगले वर्ष जनवरी में आने की उम्मीद है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस बीच विधान परिषद के सभापति

सभापति राम मुशिंदी ने बताया कि परिषद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से नागपुर में आयोजित होगा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन ने कहा है कि पिछले 18 महीनों में निधि कटौती के कारण लगभग 10 लाख महिलाएं आवश्यक मानवीय सहायता से वंचित रह गई हैं। संस्था ने कहा है कि जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद विदेशी सहायता में की गई कटौती के बाद स्थिति और भी खराब हो गई। अमरीका और अन्य प्रमुख दानदाताओं द्वारा सहायता में कटौती के कारण अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को भी कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़ी है और दुनिया भर में कार्यक्रमों को सीमित करना पड़ा है। अमेरिका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उभरते खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। यह सम्मेलन 16 जुलाई को अमरीकी विदेश विभाग में होगा। इस बैठक में यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के विदेश और गृह मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन और बेल्जियम के बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला अमेरिका के इंगलवुड स्थित लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्यार है।
1: उसके पैदा होते मैं हवाई जहाज की सैर कराऊंगा ताकि ताकि बड़ा होकर वो भी इंडियन एयरफोर्स में पायलट बने, बहुत बड़ा।
2: दोस्तों, आराधना फिल्म से अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। अगला गीत आप सुनेंगे दो उस्ताद फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ है, कमर जलाल आबादी की रचना है और संगीत ओपी नैयर का।

दोस्तों, बहुत बार आपसे कोई मुद्दत बाद मिलता है तो वो लोग आपसे इतने सवाल कर डालते हैं कि सांस भर में ही सवाल पर सवाल और

आप सोचने लगते हैं कि भाई इससे अच्छा तो शायद ना ही मिलते, या मैंने इनसे इनके साथ मिलकर ही गलती कर ली। किसी के मन में ऐसा ना आए तो आप खुशी से उनसे मिलें और बातचीत कीजिए।

ससुराल फिल्म से ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। हसरा जयपुरी की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत।

पावर हाउस। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, असद भोपाली की रचना थी और रवि का संगीत। दोस्तों वाक्य में ही बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो एक दूसरे का प्यार उम्र भर के लिए पा लेते हैं। और अगला गीत हमराही कार्यक्रम में आप सुनेंगे।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में गीत आपने सुना, भरत व्यास की रचना थी और इकबाल कुरैशी का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे छोटी सी बात फिल्म से, गीत आशा भोसले और विजय येसुदास की आवाज़ में है, योगेश का लिखा गीत है और सलील चौधरी का संगीत।

दोस्तों, जब आप अपनों से दिल की बात करने लग जाते हैं तो बस फिर उनकी दूरी कभी सहन नहीं हो पाती।

महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर ये आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। राजा मेहंदी अली खान की रचना थी और संगीत मदन मोहन का। अगला गीत आप सुनेंगे धूल का फूल फिल्म से, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी की रचना है और संगीत एंदता का।

कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत युगल गीत आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुक के साथ।

0: हमारे सभी दोस्तों ने पहचान लिया होगा कि ये गीत ताजमहल फिल्म से था, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी की रचना थी और संगीत रोशन का। अगला गीत आप सुनेंगे हम दोनों फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले का गाया हुआ है। दोस्तों, वक्त की रफ्तार चल रही है और कह रही है कि इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत है, और हम भी तो वक्त में बंधे होते हैं और अनुशासन का पालन करते रहते हैं। गीत आपके साथ।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन ने कहा है कि पिछले 18 महीनों में निधि कटौती के कारण लगभग 10 लाख महिलाएं आवश्यक मानवीय सहायता से वंचित रह गई हैं। संस्था ने कहा है कि जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद विदेशी सहायता में की गई कटौती के बाद स्थिति और भी खराब हो गई।

नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का अरुणिमा कार्यक्रम में। और सभी दोस्तों को गीतों को सुनवाने के लिए मैं आ चुकी हूँ, आपकी दोस्त वंदना चुग। नमस्कार।

दोस्तों बहुत ही मधुर गीत आपने सुना, असली नकली फिल्म से लता मंगेशकर का गाया हुआ। शैलेंद्र ने गीत को रचा था और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। पता है दोस्तों, जब आप इस गीत को सुन रहे थे साथ साथ मैं भी इस गीत को गुनगुना रही थी, क्योंकि ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है और पूरा गीत आता है। अगला गीत आप सुनेंगे जमाने को दिखाना है फिल्म से, शैलेंद्र की आवाज में। मजू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा और आरडी बर्मन ने धुन तैयार की है।

दोस्तों, बहुत बार हम जमाने को दिखाने के लिए बहुत आडंबर रचने लगते हैं। जो हम दिखावा नहीं करना चाहते वह भी करने लगते हैं, लेकिन बाद में खुद परेशान होने लगते हैं। अच्छा यही होगा कि दोस्तों से दोस्ती का रिश्ता प्यार से निभाएं और आगे बढ़ते जाएं।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र, उषा मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। गीत के बोल लिखे थे असद भोपाली ने और धुन बनाई थी राम लक्ष्मण ने। अरुणिमा कार्यक्रम में अब आप अगला गीत सुनेंगे, प्रेम पुजारी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। शब्दों में पिरोया है नीरज ने और संगीत से संवारा है एसडी बर्मन ने।

0: नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने गीत सुना पेइंग गेस्ट फिल्म से। गीत रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत था सचिन देव बर्मन का। दोस्तों, कई बार हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला कभी कभी बात का मतलब जो है कोई और समझ बैठता है, और हम जब घर आ जाते हैं या कभी फिर दोबारा उनसे मिलते हैं तो वो मन में कोई ना कोई बात लेकर बैठे रहते हैं, क्योंकि जब हमने उनसे बात की थी उन्होंने उस बात का मतलब कुछ और निकाला था लेकिन हमारा मतलब ऐसा नहीं था। तो कई बार बातों में ऐसा हो जाता है, तो अच्छा होगा कि हम बातों को आपसी में स्पष्ट कर लें ताकि रिश्तों को बिगाड़ा ना जा सके।

दोस्तों, आपने भी इस गीत में सुन लिया ना कि हर बात के दो मतलब होते हैं। जो अच्छा लगे वो अपना लो और जो बुरा लगे बस उसे जाने दो। दिल पर बिल्कुल ना रखें। पैसे की गुड़िया, इस फिल्म से लिया ये गीत था किशोर कुमार की आवाज़ में। वर्मा मलिक ने गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था। और जब दोस्तों अपने दिल की बात, हमें कई बार लगता है कि कितनी देर हो गई या कितना मन करता है कि मैं अब इस बात को किसी से साझा करूं, तो उसी से ही साझा कीजिए जिसे आप अपना दोस्त मानते हैं। क्योंकि आपको मालूम ही है कि आपके दोस्त तक आपकी बात सीमित रहेगी, वरना खिली उड़ाने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे।

और दिल की बात कर ही लेनी चाहिए जब मौका मिले तो। पहचान फिल्म से गीत आपने सुना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। वर्मा मलिक के बोल थे, शंकर जयकिशन का संकेत। दोस्तों, कार्यक्रम में अगला गीत अभी कुछ ही पलों बाद आपको सुनवाएगा। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और गीत आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुक के साथ।

सुंदरता को बयां करता ये गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में। सरस्वती चंद्र फिल्म से लिया ये गीत था। बोल इंदिवर के थे और संकेत कल्याण जी आनंद जी का था। अगला गीत आप सुनेंगे काला बाजार फिल्म से, आशा भोसले का गाया हुआ है। शैलेंद्र ने गीत को रचा है और धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने। दोस्तों आप समझ गए होंगे इस धुन को सुनकर। और इस गीत को सुनवाने से पहले ये कहना चाहूँगी कि सबके सपने जो इंसान अपने मन में जब दिन की शुरुआत होती है तो एक लंबे कार्य के लिए तैयार हो जाता है एक नई ऊर्जा लेकर। तो उसके सपने जो उसने संजोए हैं वो अवश्य पूरे होने ही चाहिए।

और जब सपने साकार हो जाते हैं तो मन कितना खुश हो जाता है ना। और हमारा तो मन यही चाहता है कि आपका मन भी यूं ही खुश रहे और आप मुस्कुराते रहें। और अब कार्यक्रम के आखिर में पारसमणि फिल्म से आपको गीत सुनवा रही हूँ, लता मंगेशकर और कमल बैरोट की आवाज़ में, असद भोपाली की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संकेत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, वाणिज्य और रक्षा सहित आपसी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। वहीं न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: Free trade agreement is a great opportunity.
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा। वहीं बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र कल समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे की जांच सीआईडी और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूरो की अंतिम रिपोर्ट अगले वर्ष जनवरी में आने की उम्मीद है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस बीच विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने बताया कि परिषद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से नागपुर में आयोजित होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उभरने उत्पन्न खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों में निमंत्रण भेजा गया है। ये सम्मेलन 16 जुलाई को अमेरिकी विदेश विभाग में होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लॉस एंजलिस के इंगलवुड में खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट

दोस्तों नमस्कार। भोर सुहानी कार्यक्रम में गीतों के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए आपकी दोस्त वंदना चुग

तो उसे भक्तों की पुकार सुनकर आना ही पड़ता है। आपने ये भक्ति रचना सुनी अवतार फिल्म से नरेंद्र चंचल और साथियों की आवाज में। आनंद बख्शी की रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संकेत। दोस्तों, ईश्वर तो कण कण में निवास करते हैं और उन्होंने अपनी रचना का रूप इस धरती पर मां को बनाकर भेजा।

दोस्तों, वाक्य में ही ईश्वर को हमने कभी नहीं देखा, ये तो एकमात्र हमारी कल्पना है। लेकिन माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, जो बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, फिर उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में भेजती है।

तो उस माँ की हमें हमेशा कद्र करनी चाहिए। और अब अगला गीत मनचली फिल्म से मुकेश का गाया हुआ है, आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मनचली फिल्म से मुकेश की आवाज में आपने गीत सुना। दोस्तों, अब कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनकर कौन कौन दौड़ा चला आता है ये तो सुनने वाला ही जानता है, लेकिन राधा के मन में तो हमेशा ये बांसुरी बजती रहती है और